0: Hello, Acharya listeners. Myself, Manjusha Katigar, Assistant Professor, Coordinator of BBI from NJ Acharya and DK Marathi College. Welcome on Acharya 90 FM on our special program of Union Budget 2026-27. Today we have an expert resource person with us from Acharya College only. He is a CA and Assistant Professor. Professor Mahesh Vaishya giving us a briefing about our budget, and he tells us how the Indian economy budget, how our budget is affecting our Indian economy, business and common person. So sir, tell me first of all, in simple language, what do you mean by budget?
1: Let me before start, I just want to ask a question. Madam, should we continue in English or it's okay if we go in Hindi as well as English?
0: No, we can use both the language.
1: Okay, thank you.
0: Combination of
1: okay, जो हमारे श्रोता है, listeners है, मैं चाहूंगा कि वो बहुत ही simplified way में हमारे budget को understand करें. And before going ahead with the budget, I just want to tell you कि budget आज की हमारी जो generations हैं, young generations हैं, वो बजट को इतना सीरियस कंसिडर नहीं करते हैं. वो सोचते जैसे बाकी भाषण होते हैं पार्लियामेंट हाउस में एंड बाकी जैसे सरकार अपनी काम करती है, वैसे एक बजट का भी एक होता है सिनेरियो. तो मैं सभी अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बजट को उस नजरिए से ना देखें आप. बजट एक अलग पहलू है. जैसे हमारे घर में हमारे गार्जियंस, माता पिता, फैमिली अर्नर्स जो होते हैं, वो हर महीने का एक इनकम लाते हैं, और साइमल्टेनियसली हमारे घर के जो दूसरे गार्जियंस होते हैं वो उसका एक एक्सपेंस का रेशियो बनाते हैं कि इस महीने में हमको मेडिकल का ये खर्चा है, इस महीने में हमें टूर के लिए यहां जाना है तो उससे ये रिलेटेड खर्चे हैं, इस महीने में हमें बच्चों का फीस भरना है उससे ये खर्चे. तो हम एक अपना स्ट्रीमलाइन करते हैं कि भाई हमारी आमदनी कितनी है और हमारे खर्च कितने हैं. जब भी किसी व्यक्ति के आमदनी से ज्यादा खर्च होंगे तो यहाँ पे एक बात खुलकर आती है कि आपको कहीं ना कहीं से वो एडिशनल इनकम को जनरेट करना होगा या फिर किसी से वो एडिशनल इनकम लेना होगा मांगकर. तो आप या तो बैंक के पास जाएंगे या अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे या किसी करीबी के पास जाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, आप मदद करिए. और अगर आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो आप वहां सरप्लस होंगे, और जब आप सरप्लस में होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने पैसे को किसी और अच्छी जगहों पर निवेश करेंगे. लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं, लोग गहने बनवाते हैं, या लोग कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं, या लोग भविष्य के लिए निवेश भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जैसे हम अपने घर में एक सिनेरियो रूपांतर करते हैं कि हमारा इनकम का फ्लो क्या है और एक्सपेंस का फ्लो क्या है, सेम वही फ्लो को हम एक अपने पूरे भारत वर्ष के लिए, पूरे नेशन के लिए हम जब बनाते हैं तो उसको हम एक बजट का रूपांतर देते हैं. तो ये बेसिक ओवरऑल जनरल सिनेरियो है बजटिंग का.
0: एज अ प्रोफेशनल पर्सन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस साल का जो बजट हमारा है 26-27 का, उसका मेन तत्वज्ञान, उसके पीछे मेन तत्वज्ञान क्या है? जो बजट बना है उसके पीछे क्या मेन एम है?
1: आपका बहुत अच्छा प्रश्न है मैम. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगा इसके बारे में कि देखिए, आज के जो जनरेशन है या अभी के जो सिनेरियो चल रही है, तो लोगों का ये सोच है कि भाई पब्लिक को क्या मिल रहा है बजट से, पब्लिक को आमदनी क्या हो रही है, पब्लिक को क्या इनकम्स आ रहे हैं, या बजट से क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है. तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आप उस सिनेरियो में ना देखें. बजट बेसिकली एक रेवेन्यू से रिलेटेड होता है और एक कैपिटल एक्सपेंस से होता है. तो जब रेवेन्यू की हम बात करते हैं, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली सरकार ये देखती है कि आपके खर्चे जो मंथली बेसिस पे हो, डेली बेसिस पे हो, एनुअल बेसिस पे हो, वो इनकम इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो, वो रेवेन्यू बेसिस होगा. बट जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हम करें तो सरकार लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलती है, जहां पे 10 इयर्स, 20 इयर्स, 15 इयर्स डाउन द लाइन, यहां से हम अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक भविष्य निवेश की तरफ चलते हैं. तो दोनों ही सेक्टर को पैरेलली गवर्नमेंट लेकर चलती है. अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें पिछले साल का जो बजट आया था वो काफी इंटरेस्टिंग बजट था लोगों के लिए, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में काफी बड़ा स्लैब रेट में राहत दिया लोगों को, 12 लाख रुपए तक के इनकम पे आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आपने नोटिस किया होगा कि अभी पिछले ही साल 2025 सितंबर मंथ में गवर्नमेंट ने जीएसटी में काफी रेट्स कट डाउन किए, तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू सेक्टर में ऑलरेडी काम कर दिया है। तो रेवेन्यू में उन्होंने इनकम के ऊपर भी आपका जोर दे दिया कि भाई आपके इनकम को हमने बढ़ा दिया, तो अब आपको टैक्स की कोई चिंता नहीं करनी है कि भाई मैं 5 लाख कमाऊंगा तो टैक्स कितना आएगा, मैं 8 लाख कमाऊंगा तो टैक्स कितना आएगा। तो अब आपको 12 लाख तक की लिमिट कर दी है गवर्नमेंट ने, तो आपको वहां पे चिंता खत्म हो गई। मेजोरिटी हमारी जो 60 से 65% जनता है जिसकी आमदनी 10 से 12 लाख के बीच में है या बिलो है, उन सभी जनताओं के लिए तो सरकार ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। प्लस बाकी हमारी जो बचे हुए लोग थे, या मैं कहूं 100% लोग थे, उनके लिए गवर्नमेंट ने सितंबर मंथ में जो जीएसटी के रेट्स कट डाउन किए, इससे कंजम्पशन में काफी ग्रोथ हुआ है। क्योंकि जब रेट कम हुए हैं तो प्राइसेस नीचे आए हैं, कीमतें कम हुई हैं, कंजम्पशन बढ़ा है, तो रेवेन्यू पे ऑलरेडी सरकार ने फोकस किया था। इस बार का बजट पे सरकार की ये एम है कि कैपिटल पे फोकस किया जाए, और इसलिए आप देखेंगे इस बार का बजट नेशन पे किया गया है, ना कि लोगों पर। तो ये नेशन जो बजट है, ये नेशन बजट ऐसा है कि हमने यहां से 10 से 15 20 साल का निवेश का स्तर रखा है, जहां पे हम बड़े बड़े निवेश कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इंफ्रा कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी कर रहे हैं, डेटा सेंटर ओपन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम काफी बड़े पैमाने में बड़े विजन के साथ हम ग्लोबलाइजेशन पे उतर रहे हैं कि हम विश्व में सबसे बड़े ताकतवर नेशन के रूप में अगले 15 से 20 साल में हम आ सके, उस तरह से हमारा फोकस है।
0: आपने अभी अभी कहा, उसी बात को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि इस साल का बजट जो है, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल, इट इज फॉर द नेशन। तो मैं बोल रही हूँ कि हमारे अगर नेशन का बजट है, तो हमारा आज का ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें 4-5 सालों से, कि इंडिया इज अचीविंग द एक्सीलेंट ग्रोथ रेट, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो राइजिंग पाथ पे दिख रहा है। आई एम द इकोनॉमिक्स टीचर, सो मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई हमारा ग्रोथ रेट अगर राइजिंग पाथ पे चल रहा है, तो उसको सस्टेन करने के लिए बजट ने क्या किया।
1: जी, उसे सस्टेन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म विजन लेना होगा। आज अगर हम सोचेंगे कि हम इस साल के इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड हम लोगों को खुश कर दें कि भाई चलो इस साल और हमने आपकी आमदनी बढ़ा दी है, इस साल और हमने आपको पैसे हाथ में दे दिए खर्च करने के लिए, रेट और कम कर दिए, तो इससे होगा क्या कि आप थोड़ा उस पाथ पे चलेंगे कि बस आपको कमाना है, खाना है और खर्च कर देना है, बजाय कि हम ये चाहते हैं कि सस्टेन हो। सस्टेन का मतलब हुआ कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है, हमें एक आगे विजन लेकर चलना है, क्योंकि सरकार की ऑलरेडी एक विजन है कि हमको बाय 2047 हमारे भारत को एक विकसित और डेवलप्ड नेशन के नाम से हमारा भारत जाना जाए, जो कि अभी भी हम उस मार्ग पे हैं कि हम डेवलपमेंट के रास्ते पे ही चल रहे हैं, और काफी सालों से हमारा विजन है कि हम कब डेवलप होंगे। हमारा जो जनरेशन है, हमने पढ़ाई के दौरान भी यही पढ़ा कि हम लोग डेवलपिंग नेशन है, और आज भी हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भी हम यही पढ़ रहे हैं कि हम डेवलपिंग नेशन है। तो कब वो सपना हमारा साकार होगा कि हम भी एक डेवलप नेशन बने, तो उसके लिए जो सस्टेनेबिलिटी है, उससे रिलेटेड इस बार के बजट में काफी कुछ सरकार ने किया है, उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर देता जाऊंगा।
0: ग्रोथ रेट तो सस्टेन कर रहा है हमारा बजट जो है, ग्रोथ रेट तो सस्टेन कर रहा है, ऐसा
1: बाकी अगर आप देखेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके ग्रोथ कंपैरेटिवली उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, कहीं तो नेगेटिव में भी हैं, कहीं पे ग्रोथ है बट बहुत बहुत माइन्यूट ग्रोथ है, बट इंडिया इज यस कंपैरेटिवली ग्रोइंग वेरी वेल, एंड इन द वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड अवर इंडिया इज डूइंग परफॉर्मिंग वेरी वेल।
0: यस, तो ग्रोथ रेट तो सस्टेन हो रहा है, ऐसे आप बोल रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट सस्टेन करने के लिए बजट ने इस बार बहुत कुछ किया हुआ है। तो ग्रोथ रेट की बात अगर आती है, तो युवा वहां पे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: जी बिल्कुल,
0: बिकॉज ग्रोथ रेट युवाओं के ही कंधे पे चल रहा
1: जी,
0: है
1: जी, आज के भविष्य
0: तो,
1: है वो।
0: हाँ, तो मुझे जानना है इस बजट में युवाओं के लिए क्या किया है।
1: देखिए, मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आप युवाओं के सेक्टर के लिए बात करें, तो आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है या एक उनके सामने प्रश्न है कि भाई एम्प्लॉयमेंट का क्या है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आज गवर्नमेंट काफी बड़ा निवेश कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, जैसे कि गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग विथ साउथ साइड में दे आर स्टार्टिंग विथ कॉरिडोर, जहां पे वो मिनरल्स जो हमारे ऐसे मिनरल्स है जो अभी तक इंडिया ने प्रॉपर एक्सप्लोर तो किया बट प्रॉपर अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया. हमारे पास मिनरल्स हैं काफी मात्रा में है बट हम उसका यूज नहीं कर पा रहे, हम उसको जनधन तक पहुंचा नहीं पा रहे, जिसके कारण से वो मिनरल्स हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं. बाकी नेशंस यूज कर रहे हैं, वो अच्छा अर्न कर रहे हैं बट हम नहीं कर पा रहे. तो गवर्नमेंट इस बार कॉरिडोर पे फोकस करके उन रिसोर्सेज का यूज करेगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट एक बढ़ेगा. दूसरा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे काम कर रही है, इंफ्रा पे काम कर रही है, जहां पे और भी विस्तार रूप से रोड्स हैं, रेल लाइन्स हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जाहिर सी बात है. उसके अलावा डेटा सेंटर्स रिलेटेड गवर्नमेंट इस बार प्लान की है कि हमें, जैसे आज हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं या और भी बहुत सारे जो एप्स यूज करते हैं, ये सारे एप्स के जो डेटा सेंटर है दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर आउटसाइड इंडिया. और उस वजह से हमारे सामने एक चैलेंज ये है कि अगर कल को ये कंपनीज किसी कारण से, जैसे कि आपने अभी सुना होगा बीच में कि अमेरिका ने टैरिफ रेट बढ़ा दिया, किसी और कंट्री ने कुछ और कर दिया, तो हमारे ग्रोथ पे उसका असर आ जाता है. तो डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम अपने यहां पे डेटा सेंटर्स कंपनीज ओपन करें और जो डेटा आज बाहर मैनेज किए जा रहे हैं, बाहर के सर्वर में रखे जा रहे हैं, बाहर गांव के सर्वर में वो स्टोर किए जा रहे हैं, वो सारा स्टोरेज हमारे इंडिया में, तो वहां पे आपका जॉब बढ़ेगा. इसके अलावा मैं आपको कह सकता हूं कि बहुत सारे प्रोडक्शन गवर्नमेंट इंडिया स्टार्ट कर रही है, तो प्रोडक्शन लाइन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहे हैं. ये सारे सेक्टर्स जो बढ़ेंगे इसमें आने वाले भविष्य में आप पकड़ के चलिए कि यहां से करीब करीब 20 से 25 लाख एडिशनल जॉब क्रिएट हो रहे हैं.
0: ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यूथ के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट ने ये दिया है ग्रोथ के, यूथ के ग्रोथ के लिए. अभी मैं जानना चाहती हूँ कि हमेशा जब बजट आता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस, रिफॉर्म, जिसे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में रिफॉर्म कहते हैं,
1: जी जी जी,
0: कि कुछ ना कुछ हमेशा गवर्नमेंट रिफॉर्म लाती है, तो इस बार कितने रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इस बजट में लॉन्च किए हुए हैं और क्या है वो?
1: देखिए, जो मौजूदा सरकार है अगर आप देखें या इसके पिछले की भी जितनी सरकारें गई हैं, अगर आप इनका टोटल समावेश करें, टोटल एग्रीगेट करें, तो करीब करीब 350 के आसपास हमने रिफॉर्म्स किए हैं अब तक. और ये कई सारे रिफॉर्म्स है, आप इसमें बैंकिंग रिफॉर्म करिए, आप इसमें टैक्सेशन में रिफॉर्म लीजिए, आप इसमें रेवेन्यू रिफॉर्म करिए. हमने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, लॉज हैं, जिनको हमने एबॉलिश किया या उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किया, लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया हमने, लोगों के लिए जीएसटी में जो सिंप्लीफिकेशन लाए हैं या हमने इनकम टैक्स में जो कलेक्शंस किए, ये सारे रिफॉर्म्स हैं. तो ऐसे हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और ये रिफॉर्म्स बेसिकली क्या होता है, समय की मांग है. जब लॉ लिखा गया था उस समय जो दौर था वो दौर और आज के दौर में बहुत करेक्शंस हैं. अगर आज भी आप कहेंगे कि भाई आप पेपर एंड पेन से लेकर कोई हिसाब किताब करें तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज. बट एक दौर था कि जब पेपर पेन से ही लोग हिसाब किताब करते थे और जनरल बुक्स लिखते थे, बट आज तो हर चीज के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए. आप ये भी नहीं कह सकते कि चलिए मैं एक छोटे से किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूं, नहीं, क्योंकि आज मल्टीनेशनल सेक्टर में रियल टाइम पे आपको डेटा एंट्री होना है, रियल टाइम पे सारा काम, तो हर चीज के लिए रिफॉर्म करना ही पड़ेगा. जब तक रिफॉर्म नहीं होगा हम चेंजेस नहीं देख पाएंगे और चेंजेस नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो रिफॉर्म तो बहुत जरूरी है जी.
0: अभी मैं एक और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये भी देश के विकास के हिसाब से ये भी मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के साथ साथ आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे एमएसएमई के लिए, क्योंकि इस मतलब रिसेंटली एमएसएमई का भी नाम बहुत आ रहा है कि हमें अगर ग्रोथ करना है तो वी हैव टू बुश अवर एमएसएमई, और गवर्नमेंट हर बजट में एमएसएमई को कुछ ना कुछ तो दे रही है. तो आप थोड़ा फोकस कर
1: एमएसएमई से, मैं आपको बताऊंगा एमएसएमई से स्टार्ट अगर हम करना चाहते हैं तो इसमें देखिए, इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम लोग सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होती है सेमीकंडक्टर, क्योंकि अगर आप देखें हमारे जो बाकी नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस करते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसे ही अगर आप देखें तो इंडिया एक कंजम्पशन नेशन के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि आज भी हमारे भारत में 60% से ज्यादा कंजम्पशंस है एंड प्रोडक्शन में अभी भी इंडिया काफी नेशन से पीछे चल रही है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम प्रोडक्शन लाइन को ज्यादा स्ट्रीमलाइन करें, प्रोडक्शन पे जितना हो सके निवेश करें ताकि हमारे प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ सके। तो आज गवर्नमेंट एविएशन सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रही है, सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में गैजेट्स यूज होते हैं या जो चिपसेट्स यूज होते हैं उस पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, प्लस रेल में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। आज भारत रेल इम्पोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि रेल एक्सपोर्ट करने के प्रोसेस में आ गया है। भारत डिफेंस पे काफी खर्च कर रही है, डिफेंस के सेक्टर को मजबूत कर रही है। हम अपने खुद के स्वदेशी फायर फाइटर्स बना रहे हैं, हम अपने खुद के स्वदेशी आर्म्स एंड एम्युनिशंस बना रहे हैं। तो यहां पे जो प्रोडक्शन लाइंस हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है कि हम अपने भारत को चारों तरफा सेफ गार्ड कर सकें, डिफेंस के सेक्टर में चारों तरफा हम अपने प्रोडक्शन लाइन को अच्छा कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। अगर किसी भी वाहतुक से अगर कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो बाय रेल, बाय रोड, बाय सी या बाय वाटर हम तीनों ही तरफा से जल्द पहुंच सकें, डिलीवरी करवा सकें, सर्विस अच्छी कर सकें, इसके ऊपर फोकस है। तो हम प्रोडक्शन लाइन में ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं, बट यस काम अभी भी बहुत करना बाकी है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बजट से सारा काम होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बजट एक छोटा सा माध्यम है, एक छोटा सा पावली है जो हमने स्टेप अहेड किया है। धीरे धीरे ऐसे हम कई सारे बजट लाके धीरे धीरे हम आने वाले 10 साल में हम अपने भारत को एक श्रेष्ठ भारत होता हुआ देखेंगे।
0: ऐसा कहते हैं कि सर्विस सेक्टर इज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ फास्ट करना है तो सर्विस सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस बजट ने सर्विस सेक्टर को क्या क्या दिया है?
1: देखिए मैं आपको इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि जो अभी प्रेजेंट अगर आप देखें कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, प्रेजेंट जो टूरिज्म सेक्टर है अगर आप देखें, हमारे विदेशी जो मेहमान भारत घूमने आते हैं, सैलानी आते हैं घूमने, वो करीब करीब इस समय 1 करोड़ के आसपास टोटल पॉपुलेशन आती है। तो गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है कि इसको हम 10 करोड़ टूरिज्म पे कैसे पहुंचाएं। फॉरेन टूरिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, मैं डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट जब हमारे नेशन में आते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी फॉरेन करेंसी, उनकी फॉरेन इकोनॉमी हमारे कंट्री में जम करती है, इंजेक्ट होती है। और क्योंकि उनकी करेंसी जब हमारे कंट्री में इंजेक्ट होती है तो हमारे कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट होता है, नंबर वन। नंबर टू, जब वो हमारे कंट्री में आते हैं तो यहाँ के जो सर्विस हैं वो सुधार होते हैं, क्योंकि उसमें आप हॉस्पिटैलिटी सर्विस को बढ़ावा देते हो, आप टूरिज्म को बढ़ावा देते हो, आप अपने ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते हो, आप अपने लोगों में एक सिविक सेंस जागरूक करते हो कि किसी से किस तरह से आप बर्ताव करें। एक अगर कोई महिला अगर फॉरेनर आई है तो उसे आप किस तरह से बात करें, एक कोई टूरिस्ट आया है जो फॉरेनर है उसे किस लैंग्वेज में, तो आपका लैंग्वेज प्रोग्रेस होगा, आपका पहनावा प्रोग्रेस होता है, आपके कल्चर्स डेवलप होते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर में एक एग्जांपल है कि ये एक तरह से छोटा सा ग्रोथ सर्विस में है। तो ऐसे कई सारे सर्विस सेक्टर्स आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी सर्विस में गवर्नमेंट फोकस कर रही है, टूरिज्म पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एजुकेशन सर्विसेज पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। इस बार के बजट में करीब 1.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट रखा है कि हम एजुकेशन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करेंगे और करीब करीब 1.5 लाख करोड़ पे रिसर्च और रिक्रूटमेंट और जो बाकी बच्चों से रिलेटेड उनके रिसर्च करना, उनके पढ़ाई लिखाई पे खर्च करना, उसके ऊपर काफी फोकस कर रही गवर्नमेंट। तो सर्विस में भी कहीं ना कहीं हमारा बढ़ावा हो रहा है।
0: अभी मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि सर्विस सेक्टर अगर ग्रो हो रहा है तो सर्विस सेक्टर में अगर टॉप में अगर कोई है आज माना जाता है तो वो है हमारा आईटी सेक्टर एंड डिजिटल सेक्टर
1: जी।
0: तो आईटी सेक्टर के लिए इस बजट ने क्या किया है?
1: जी मैं अभी आपको इसके पहली जस्ट फ्यू मिनट्स अगो मैंने आपको ये प्रश्न का जवाब दिया था कि आपको पता है कि जैसे कि हमारे जो आज आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं या जितने भी आज की यंग जनरेशन सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हैं, इन सबके जो डेटा सेंटर्स है ये इंडिया में नहीं है। दे आर ऑल इन फॉरेन. अब होता यह है कि अगर कल को किसी फॉरेन कंट्री के डेटा सेंटर ने या उस कंपनी ने कह दिया कि भाई कल से हम ये सर्विस के चार्जेस लेंगे, या कल से हम इसके टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं, या कल से ये सर्विसेज जो फ्री सर्विसेज थे ये पेड सर्विसेज हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे बहुत सारी जनताओं को इफेक्ट हो जाएगा उसका, नंबर वन. नंबर टू, डेटा सिक्योरिटी कि भाई आपका जो डेटा है वो कितना सिक्योर्ड है. आज आप व्हाट्सएप पे धड़ल्ले से अपने बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर देते हो, आप व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल फोटोज डाल देते हो, क्या गारंटी है कि ये फोटोज, ये जो डेटा आपने फीड किया है ये सिक्योर्ड है? क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये जो डेटा जा रहे हैं ये डेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है. दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय अदर पार्टीज विच आर नॉट इन इंडिया, और उनके ऊपर लॉ कानून इंडियन का नहीं लगेगा, उनके ऊपर सारे लॉ कानून विदेशी कानून लगेंगे. और अगर विदेशी कानून में उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई उनके लिए प्रोहिबिशंस नहीं है डेटा पे, तो वो तो मनमानी काम कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आने वाले नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हमारे इंडिया में डेटा हब हो, डेटा सेंटर हो, और ये सारे डेटा हम मैनेज करें जो हमारे इंडियंस के डेटा हो. तो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम है इससे रिलेटेड.
0: अभी तक हम लोग जो बातें कर रहे थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एमएसएमई की बातें हमने की. मैं अभी आप लोगों आपको एक थोड़ा अलग एंगल से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, वो है रिलेटेड विद द स्टॉक मार्केट. तो पहले तो मुझे बताइए कि व्हाट डू, क्योंकि हमारे श्रोते जो है वो एक आसान भाषा में जानने चाहते हैं कि व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि इस टैक्स में बहुत बदलाव हुआ है ऐसा हमने देखा है. तो पहले तो बताइए कि व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और बाद में बताइए कि उसमें क्या चेंजेस हुए.
1: मैडम आपने ये बहुत बढ़िया प्रश्न किया है और A1 प्रश्न किया है मैं ये कहूंगा, क्योंकि काफी लोग इससे नाराज है कि भाई गवर्नमेंट ने एसटीटी रेट बढ़ा दिया. एसटीटी का मतलब हुआ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. अब क्या होता है एसटीटी, मैं थोड़ा सा पहले उसका ब्रीफ कर दूं. देखिए जब भी आप अपने शेयर्स को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड्स को किसी एक्सचेंज के थ्रू, हमारे भारत में दो एक्सचेंज सेंटर्स है, एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE. दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये मिडलमैन बन जाते हैं हमारे लिए, जिनके थ्रू बायर एंड सेलर अपनी सिक्योरिटी को एक्सचेंज करते हैं. अब जब हम एक्सचेंज करते हैं अपने सिक्योरिटीज को, तो यहां पे गवर्नमेंट एसटीटी का प्रोविजन लाती है. तो जो बायर होता है उसे भी एसटीटी देना होता है, और जो सेलर होता है उसे भी एसटीटी देना होता है, जो कि अब तक 0.05% था. अब गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा स्लाइट इंक्रीज किया है, 0.15% पे लाया है. अब आपका कहना होगा कि गवर्नमेंट ने ये 0.10% जो बढ़ाया है इससे गवर्नमेंट को क्या ही आमदनी हो रही है, और क्यों किया ऐसा गवर्नमेंट ने? तो मैं इस पे एक आपको ये तरह से विश्लेषण दूंगा कि इसमें गवर्नमेंट का मोटिव क्या है वो आप समझने के पक्ष में रहिएगा. गवर्नमेंट चाहती है कि आज की जो जनरेशन है ना, आज की मैक्सिमम यंग क्राउड्स इजी मनी के पीछे दौड़ रही है. आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स चलते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स होते हैं, यूट्यूब पे एड्स आते हैं, इवन हमारे टीवी चैनल्स पे एड आते हैं, कई मैचेस के दौरान भी एड आते हैं कि भाई ट्रेडिंग करिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, इंट्राडे ट्रेडर बन जाइए, या फिर आप फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करिए और लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए. अब जो हमारी यंग क्राउड है जिनके लिए संघर्ष करना एक बड़ा चैलेंज है, तो वो बच्चे सोचते हैं कि यार अगर मुझे महीने में 50,000 कमाना है, 1,00,000 कमाना है, तो मैं क्यों ना अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट करूं और यहीं पे इसको चैनलाइज करके मैं इसी से पैसे कमा लूं. अब जिनके पास पैसे हैं वो तो कर सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट से, बैंक से, रिश्तेदारों से, अपने घर के फैमिली मेंबर से पैसे लाकर इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचकर कि मैं इसमें कमाऊंगा, बिना प्रॉपर एनालिटिकल स्टडी, बिना प्रॉपर एनालाइज किए, वो पैसे को लगा देते हैं और बाद में होता ऐसे है कि बड़े बड़े कंपनियों में उनके पैसे जिसमें उन्होंने निवेश किया है ये सोचकर कि ये मुझे इंक्रीमेंट देंगे या मुझे फायदे देंगे, कई बार उनको उसमें नुकसान होता है और जब नुकसान सहते हैं वो तो उनको बहुत बड़ा फटका लगता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डिस्करेज सच काइंड ऑफ इजी अर्निंग मनी वेयर गवर्नमेंट हैज इंक्रीज एसटीटी। तो ये एक तरह का मैं कहूंगा ये डिस्करेज करने का पॉइंट है गवर्नमेंट का यंग जनरेशन को, खास करके हमारे, ताकि यंग जनरेशन इजी मनी की तरफ ना भागें। आपको इसके पहले पता होगा जो बजट के पहले आया था कि गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन गेमिंग्स है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लाया है, उसके लिए भी बिल पास किया है कि ऑनलाइन जो गेमिंग्स आज इंडिया में धड़ल्ले से चल रहे हैं जिसमें काफी लोग अपने पैसे निवेश करते हैं ऑनलाइन गेम में पैसे कमाने के चक्कर में और वो पैसे गवा बैठते हैं, तो उस पर भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लाया। सेम रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट अब यहाँ पे एसटीटी के द्वारा लाने की कोशिश कर रही है। जी,
0: इसके आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश जो है वो हमेशा कहा जाता है जय जवान जय किसान।
1: जी,
0: तो ये हमारे बातें हमने की और अगर किसानों के बारे में हमने बात नहीं की तो हमारा ये डिस्कशन।
1: जी, ये हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका ये नारा था जय जवान जय किसान। जी बोलिए,
0: किसानों के लिए क्या किया है बजट में?
1: देखिए मैम, किसानों के लिए गवर्नमेंट तत्पर काम कर रही है और किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए। आज भी भारत में आपने देखा होगा कई बार फसलें होती हैं, अच्छी फसलें हो जाती हैं, बट कई बार हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन जो अनसर्टन हो गई हैं, अभी कभी भी आप देखते हैं रेन आ जाता है, कभी भी अचानक से पता चलता है कि भाई ठंड का मौसम हो रहा है और बहुत भीषण गर्मी हो रही है, या गर्मी का मौसम चल रहा है और अचानक से बारिश आ जा रही है। तो ऐसे मौसम में जब हम अपने अनाजों को खेतों में काट कर रखते हैं या खेतों में अभी वो अनाज पक रहे हैं और उसमें अगर वर्षा हो जाए या किसी कारण से क्लाइमेट अनसर्टन हो जाए और चेंज हो जाए, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट उस पर फोकस करके हमारे किसानों भाइयों के लिए हॉर्टिकल्चर बोलिए, फिश कल्चर बोलिए, या फिर फार्मिंग बोलिए, उसमें फोकस कर रही है, उसमें निवेश कर रही है गवर्नमेंट। प्लस करीब इसमें, जहां तक मैंने बजट को इस बात का समझा है कि करीब 4 से 4.5 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने इसमें निवेश किया है, प्लस इसपे काफी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है बाय वे ऑफ यूरिया, बाय वे ऑफ पेस्टिसाइड्स, बाय वे ऑफ वेरियस सीड्स, तो इसमें भी काफी बेनिफिट्स गवर्नमेंट पहुंचा रही है लोगों तक। और एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट अब मिडल मैन के हाथों में न रखकर डायरेक्ट कंज्यूमर टू सप्लायर को एसोसिएट करने की कोशिश में है, जहां पे जो सप्लायर है, जो फार्मर है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सके अपने प्रोडक्ट को थ्रू ऑनलाइन बिजनेस आप कहिए, या डायरेक्ट अपने व्हीकल से वो मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके जिससे उसे उचित दाम मिले। आज भी आप देखते हैं कि जब सप्लाई चेन बढ़ती है अचानक से किसी भी प्रोडक्ट की, तो प्राइस कम्स डाउन और बेचारे जो फार्मर्स होते हैं उनको उनके उचित दाम नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट अच्छा फोकस कर रही है, वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बढ़ रही है, फार्मिंग सेक्टर्स में एग्रीकल्चर को ग्रोथ कैसे करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, बिना फर्टिलिटी को हम फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा निवेश किया है। और जाहिर सी बात है आने वाले समय में हमारा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर ये अच्छा बूम करेगा, ग्रो करेगा। जी,
0: अभी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस बजट की एक नस पकड़ने वाली हूँ और वो नस है फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि ये जो बजट पूरा हम लोग बनाते हैं उसके पीछे हमारा एम ही है कि हाउ वी आर कंट्रोल अवर डेफिसिट। तो इस साल के बजट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है?
1: जी मैं आपको कह दूं कि 2022-23-24 में हमारा फिस्कल डेफिसिट करीब 6.5% के आसपास था, जिसको गवर्नमेंट इस बार मिनिमाइज करते करते 4.3% के आसपास ला रही है। अभी फिस्कल डेफिसिट बहुत सी आम जनताओं को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, तो ये एक आम लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो ऐसे समझें कि गवर्नमेंट का इस साल का जो खर्च है वो करीब 55 लाख करोड़ रुपए का है। पूरे साल का जो खर्च बजट बनाया है उन्होंने वो 55 लाख करोड़ का है, और उसके अपोजिट में जो इनकम आना है वो करीब 44 से 44.5 लाख करोड़ के आसपास इनकम है, तो आने का जो स्रोत है वो करीब 44.5 लाख करोड़ है और जो आउटगोइंग का स्रोत है वो 55 लाख करोड़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ ह्यूज गैप, करीब करीब 10 लाख करोड़ का गैप है। अब ये गैप को फंड करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेगी या फिर बॉन्ड्स इश्यू करेगी, ट्रेजरी बिल्स इश्यू करेगी, जहां से वो अपने इनकम को राइज करके अपने एक्सपेंस को कॉम्पनसेट करेगी। तो यहां पे गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रही है अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हुए। तो जैसे जैसे रेवेन्यू को ग्रो करेंगे हम और एक्सपेंडिचर को हम बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर को हम कम नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा काम अभी भी करना बाकी है, देश को अभी भी आगे ले जाने के लिए हमें कई वर्ष और लगेंगे, कई वर्ष और हमें अपने पूरे मेहनत के साथ काम करने होंगे, तो वहां पे एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे बट साइमल्टेनियसली हमें इनकम को भी राइज करना है सो दैट हमारे फिस्कल डेफिसिट को हम स्लाइटली धीरे धीरे धीरे धीरे नीचे ला सके। तो इस बार का हमारा जो डेफिसिट है फिस्कल वो करीब 4.3 के आसपास परसेंटेज के आसपास रहने वाला है। जी
0: अभी तो हमने सारे इस साल के बजट के बारे में हमने जानकारी ले ली, अभी हमारा नारा है विकसित भारत 2047।
1: जी
0: तो अभी हम लोग हमारे सेशन के कंक्लूजन पे आते हैं, तो अभी मुझे बताइए कि ये जो नारा है हमारा विकसित भारत 2047, ये जो हमारा विजन है वो किस तरह से इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इस साल के बजट?
1: जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से भी कहा और अभी भी मैं वापस रिपीट करूंगा उसी लाइन को कि गवर्नमेंट आने वाले 15 से 20 साल के भविष्य पे निवेश कर रही है और इस बार का बजट अगर आप देखेंगे तो नेशन फर्स्ट, इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने नेशन को फोकस किया है इंडिविजुअल को नहीं, तो नेशन फर्स्ट के नारे पे गवर्नमेंट काम कर रही है और उसी के प्रोविजन पे इस बार का बजट मैक्सिमम आप देखेंगे या आप कहेंगे कि भाई करीब करीब 90% से ज्यादा जो इस बार का बजट आया है वो 90% से ज्यादा जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे कैपिटलाइज हैं। कैपिटलाइज मतलब वो लॉन्ग टर्म विजन पे जा रहे हैं और उनका जो असर है आने वाले 5 से 10 साल बाद 15 साल बाद हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने एक अपना एम रखा है, लक्ष्य रखा है, या गवर्नमेंट ने एक जो भविष्यवाणी की कि बाई 2047 तक भारत एक विकसित भारत होगा और एक डेवलप्ड नेशन होगा, उसके लिए हमने इस साल एक कदम उठाया है और मैं ये कहते हुए खुश भी होता हूं कि आने वाले भविष्य में ऐसे कई बजट आएंगे जहां पे हमारे नेशन को हम प्रायोरिटी रख के नेशन के बारे में, क्योंकि अगर घर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित, और अगर घर में सुरक्षा नहीं है या घर हमारा सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कभी नहीं हो सकते। तो ये जो नारा है 2047 का, ये नारा तभी पूरा हो पाएगा जब हमारा घर सुरक्षित होगा और घर को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने नेशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना होगा चारों तरफ से, चाहे वो आईटी से हो, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चाहे वो सर्विस से हो, चाहे वो लोगों की जीडीपी से हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम से हो, हर सेक्टर में हमें हम ऐसे फोकस ही नहीं कर सकते कि सिर्फ हम इस सेक्टर को बढ़ावा देंगे उस सेक्टर को, हमें हर सेक्टर को देखना होगा, हमें ट्रांसपोर्ट देखना होगा, हमें हॉस्पिटलिटी देखना होगा, हमें टूरिज्म देखना होगा, हर सेक्टर पे हम जब जाएंगे तब हम 2047 को अचीव करेंगे और हम डेवलप्ड नेशन बनकर निकलेंगे।
0: यस सर, ये तो है हम लोग विकसित भारत का हमारा ये जो नारा है ये तो हमारा पूरा होने ही वाला है
1: जी।
0: इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, पूरी तरह से हमें कॉन्फिडेंस है, तो ये तो होके ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द इनसाइट्स ऑफ यूनियन बजट, आपने बहुत

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: 5 मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

0: Llevo 20 años en este negocio y no van a tener ningún problema.
1: Es que push time que están aquí.
2: ¿Y cuánto tiempo se tardan en entregarlos?
0: Una semana.
2: In one week, ready.
3: Take care of yourself, yeah? Okay. Bye-bye. बस एक हफ्ते में तेरा पासपोर्ट लेके आता हूँ मैं, बस एक हफ्ता संभाल लेते हूँ, उसके बाद सारी दुनिया तेरी, जहाँ जाना है जा।
4: सुहासिनी मुळगावकर यांचं 13 जून 1989 रोजी निधन झालं. आपल्या आचार्य

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है, और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आजादी के पहले की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आजादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तां। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी, और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे, और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी

मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने। सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कांधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कांधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और 2 छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है? हेमा ने उसकी आंखों में देखा, अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है, आनंद धीरे से बोला। अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने, अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ? अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना? अशफाक चुप रहा।
उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहती। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा। अम्मी, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा? हम कैसे चैन से जी पाएंगे? हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे? हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे? हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे? अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी, उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है? अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

सुस्वागत है दोस्तों आपका। ब्रेक के बाद हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में जरूरतों का सामान भी ज्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियां जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आजादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आजादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए। पैम्फलेट बांटने लगे, गुप्त मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी। हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखे गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा। अशफाक का खून खोल उठा, उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी। वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए। एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी। सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो?
हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा। क्रांति में लोग कहानियां नहीं, लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीट कर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। माँ पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया। नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका। तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून थूकते हुए हंस पड़ा। फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी। वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग। आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले, आनंद आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हिमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून 1 आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि कैसे 3 दोस्तों के लिए सिर्फ आजादी ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे 3 दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी है, आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होंगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए

0: हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बे स्वागत करता हूँ आपका क से कवि। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में सुना कि किस तरीके से हमारे मित्र अभिजीत अयंग और राहुल सफर जी ने अपने कविता की जर्नी को, अपनी कवि की जर्नी को इस क से कवि के माध्यम से सुनाया, हमें बताया, तो आज हमारे साथ एक और इस हार में जुड़ने एक और मोती आ गए हैं। नाम है मोनिस वारसी। मोनिस जी अपने उम्र से बहुत ज्यादा गहरी बातें कह देते हैं, बहुत आसान और बहुत सहज लहज, सहज तरीके से। लहजा बहुत सिंपल सा पर बातें इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल कि शायद ये बातें करे तो हमें सोचने में इतना वक्त लग जाए कि क्या बात कही थी और क्या मतलब निकला, और वो प्रोसेस होने में और वो प्रोसेस होके रिजल्ट आने में इतना समय बीत जाता है कि दूसरी बात कैच करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो इंटरव्यू होगा ये बहुत ज्यादा उन सारी बातों को उजागर करेगा जिसमें शायद हम, जिस बारे में शायद हम सोचते नहीं है या जिस पहलू तक हमने जाने की कभी कोशिश नहीं की। तो मोनिस जी स्वागत है आपका कैसे कभी में। मोनिस जी आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने लिखना कब शुरू किया?
1: लिखना एकदम से लिखता तो शुरू से ही था। कभी नज़्में लिख दी, कभी एक लाइन लिख दिया, कभी कोई वर्ड लिख दिया। जैसे जो सीड है वो तो हमेशा पड़ा ही रहता है ना इंसान के अंदर, जिस चीज का है उसे पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो मैंने प्रॉपर लिखना 2019 में शुरू किया। 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में जिसने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया कि लिखा जाए। और हर चीज के लिए कहते हैं ना कि स्पार्क की जरूरत है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्पार्क मेरी जिंदगी में आया किसी इंसान के तौर पर और मैं लिखना चालू किया। फिर रुका नहीं, करूँ लिखते गया।
0: तो जब आपकी जिंदगी में वो स्पार्क आया तो उस वक्त क्या महसूस हुआ जिसने

0: तो उस फीलिंग को टच करने की जो सबसे इजी या उसके सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो चीज जा सकती है वो शेर व शायरी मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि जो फील कर रहा हूँ वो तो शायद कोई ना जान पाए, शायद मुझे भी वो चीज़ एक्सप्लोर करने में टाइम लगे, या हो सकता है मैं भी कभी ना जानूँ, मगर हाँ जितना हो सकता है उतना लिखते हैं तो निकलते ही। और आपको मालूम है कि प्रेम बहुत ही पाक और बहुत ही पवित्र चीज़ है, तो उसकी कोई
1: तुलना नहीं है,
0: तुलना नहीं है, कोई उसका वर्बल कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से, जो हम कर पाते हैं बस लिख देते हैं कुछ।
1: तो जैसे कि आपने कहा कि कभी एक कविता लिख दी, कभी एक पैराग्राफ लिख दिया, या कभी एक शब्द लिख दिया, तो कभी कोई एक ऐसा शब्द लिखा है जो आज तक वो शब्द ही रहा है, मतलब फिर उसके आगे कभी कुछ लिखा ही नहीं?
0: मेरा मैंने लिखा था एक मेरा।
1: हाँ।
0: अब वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा ही पसंद है, जो उनकी मतलब डिवोशन है, जो उनका पूरा आत्मसमर्पण है, जो वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता है, बहुत ही ज्यादा। एक होता है कि किसी को पसंद करना, एक होता है किसी को हर दर्जे तक पसंद करना। तो मैंने एक ही सबसे पहला एक मैंने लिखा था मीरा, एक शब्द मेरी डायरी में अभी तक लिखा हुआ है मीरा, तो वही मुझे अभी तक फिलहाल तो वही याद आ रहा है कि एक ही शब्द से अगर काम चल जाए, क्योंकि वो एक शब्द है, उसको खोलेंगे तो कम से कम 1000 किताबें आप लिख सकते हैं मीरा, जो उनकी मोहब्बत है, जो उनका इश्क है कृष्ण को लेके, उस मोहब्बत को अगर टटोलने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और डायमेंशन में आ रहे हैं।
1: अगर
0: डायमेंशन शायद इश्क का ही है,
1: और शायद वो डायमेंशन खुली आंखों से देखा भी नहीं जाएगा वो।
0: तो भाई आशिक के लिए आशिक की बात है।
1: तो फिर मीरा को बाद में आपने पढ़ा, आपने वो एक वर्ड लिखकर छोड़ दिया, फिर उस शख्स को जानने की आपने कोशिश की कि क्या था क्या नहीं, क्या पढ़ा फिर मीरा के बारे में?
0: मीरा के बारे में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे कुछ इतना ये इस चीज को मैं चाहता हूँ कि उनकी जो उनका जो इश्क है, वो जिस घर से आती थी उसमें क्या हुआ, फिर कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम था वो कितना किस दर्जे तक गया, ये मुझे मालूम है, खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को, ये मुझे मालूम है। और एक आशिक के लिए जानना इतना काफी, मुझे अच्छा लगा ये चीज, और वो मुझे हमेशा से पसंद है। मैंने क्लास 8 में उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तभी से वो मेरे मन को।
1: कितना खूबसूरत एहसास रहा होगा अगर जब हम मीरा को पढ़ते हम जानते हैं कि मीरा का सिर्फ श्री कृष्ण के लिए समर्पण था, उनकी कोई इच्छाएं नहीं थी कि इन रिटर्न मुझे उनसे कुछ चाहिए, उनका सिर्फ यही था कि बस मैं जो कर रही हूँ उससे मेरे भगवान, मेरे प्रीतम, मैं जिनसे प्रेम करती हूँ या मैं जिनके लिए पूरी समर्पित हूँ, वो बस खाली इस चीज को जान ले। लेकिन आजकल ऐसा है कि दुनिया पूरी शो ऑफ के इस चक्कर गई है, मतलब प्रेम, हाँ प्रेम, प्रेम को समझती है कि शो ऑफ है, मतलब जब तक आप गिफ्ट्स ना दे दे, जब तक आप कुछ भेंट ना दे दे, कुछ दे ना दे, इसको लोग प्यार समझते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे?
0: मैंने इसी को मद्देनजर, मतलब इसी को नजर में रखते हुए शेर लिखा था कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
1: तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है क्या,
0: अगर ये बात है सहारा तो तेरा शहर कभी ना पूछे।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तो मैंने मीरा को नजर में रखते ये शेर लिखा था। जब सेल्फलेस चीजें हैं, ये किसी भी सेंचुरी की बात नहीं, ये आज से 1000 साल भी कोई इश्क करेगा तो इसी फेज में, वो दरवाजा सेम, इश्क का दरवाजा उतना ही बड़ा है, उतना ही सेम है, उसी जगह पर, वो शिफ्ट नहीं होता है कभी, वो वहीं पर, जो भी आदमी इश्क करेगा चाहे वो मीरा हो चाहे सचिन हो चाहे मनीष, उस पर जाना उसी दरवाजे से, तो वो फील कर सकता है। तो मैंने ये लिखा मीरा जी को
1: मद्देनजर रखते हुए
0: कि किसी चीज की जरूरत नहीं।
1: मैं भी मीरा इस कैरेक्टर से मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, ये कैरेक्टर मुझे इतना इंस्पायर करता है कि मैंने लिखा कि सब प्यार मोहब्बत मीरा है, रब की भी चाहत मीरा है, आशिक ने लिखा हर प्रेम रखत मीरा है, सब पंछी तारे मीरा है, सब पंछी सारे मीरा है, गगन में तारे मीरा है, जो जीत गए वो कृष्ण हुए, जो हार गए वो मीरा है। लेकिन इश्क में यही है, जो हार जाता है वही जीत जाता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मीरा ने हार कर जो पा लिया वो शायद लोग जीत कर भी नहीं पा सकते अपनी जिंदगी में। एक उनका डिवोशन, एक उनका समर्पण इतना गहरा लगता है मुझे कि

0: अगर आप मीरा के पैरेलल कुछ वर्ड कहना चाहे तो क्या कहेंगे प्रेम को छोड़कर?
1: मैं कहूंगा कि जो मुझे सबसे बेहतर उनका ये लगता है, जैसे आपने कहा कि सब हार गए,
0: जो जीत गए वो कृष्ण में, जो हार गए वो मैं।
1: इसी मतलब आपने जो लिखा शायद मैं मतलब बता दूं लोगों को कि हार गए का मतलब ये थोड़ी है कि कोई जंग चल रही थी हार गए।
0: करेक्ट।
1: उन्होंने अपने सेल्फ को हरा दिया।
0: हाँ।
1: बोले तो कुछ है ही नहीं।
0: करेक्ट।
1: कोई मतलब नहीं है तेरा, क्या है मेरा, पुलिस क्या है, शब्द क्या है, कुछ नहीं। तो ये हार वो जीत से बेहतर है।
0: सही बात है, सही।
1: तो ये हार बहुत ही मतलब बहुत ही पवित्र है ये हार, कि किसी के लिए हम हार जाए प्रेम उसी में, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो हारने के बाद भी। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन है, कृष्ण के दर्शन हो गए तो क्या है?
0: वही एक दर्शन में सारी दुनिया छुपी है, देखा जाए तो सारी दुनिया उसी एक दर्शन में। तो मेरा एक सवाल था कि कभी आपने ये सोचा कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा भी होगा, एक डायमेंशन ऐसा भी होगा जहां शायद कृष्ण मीरा के होंगे? कभी ऐसा सोचा है कि एक पैरेलल वर्ल्ड ऐसा होगा?
1: नहीं होगा, हम और आप
0: वो तो जब इश्क बढ़कर डिवोशन के लेवल पे चले जाए तभी ये सब पॉसिबल
1: है। इश्क का रियल शब्द भाई ऐसा है कि वहाँ पे वो खुद ही मल्टीवर्स है, वो उसमें कभी आदमी बहुत दुख से भर जाता है, कभी बहुत सुख से भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हर पल ऐसे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे, चलते रहता है। लोगों को लगेगा कि आप अरे तो मैं बुक की पहले से तारीफ कर रहा
0: हूँ, हाँ।
1: तो ये तो चलते रहेगा। ये मतलब ऐसी चीज है कि ये जैसे कुछ भी हो, कुछ अब जैसे मैंने लिखा कि तेरे इश्क के शहर को जिस्म का सहारा जरूरी है, फिर मैंने एक चीज और लिखी, अब तो मुड़के देखने में भी तकलीफ है तुझे, तो बता तेरे बादू का एतबार करूँ या रहने तू, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता क्या करूँ क्या रहने।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ वाह वाह वाह, फिर से मुकर्रर इरशाद, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह।
1: अब तो मुड़के देखने में भी
0: तकलीफ है तुझे,
1: तो बता तेरे बातों का एतबार करूँ या रहने दूँ, हजार बात है दिल में तेरी उल्फत की कसम, समझ में ये नहीं आता कि क्या करूँ क्या रहने।
0: वाह वाह वाह,
1: ये भी रेंज है। मैं ये कहता हूँ कि इश्क कोई किसी परिस्थिति में तोड़ना नहीं, कभी ऊपर भी रहेगा कभी
0: नीचे भी रहेगा,
1: वो मिजाज की बात है। ऐसे ऐसे अशारा देते हैं, लगे देते हैं, तो नफरत करता है, मगर महबूब से कोई नफरत नहीं कर सकता,
0: महबूब बनाई है प्यार
1: को गाली नहीं दे
0: सकता।
1: किसी भी हाल में रखे वो ठीक है, फिर वो वहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो वहाँ पे जो सरेंडर जो लेवल है वो अलग होता है। इसलिए मैंने मेरा सही है
0: लेकिन यही एक चीज है। आज से अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ और अभी आ जाओ, पहले लोग एक्सेप्टेंस में ज्यादा बिलीव करते थे, अब फोर्सफुली एक्सेप्टेंस में बिलीव करने लोग लगे हैं। कि पहले एक्सेप्टेंस ये होता कि अगर कोई कह देता कि नहीं है मुझे आपके प्रति प्रेम नहीं है, या मैं उस नजरिए से आपको नहीं देखता हूँ, तो लोग समझ जाते कि ठीक है आप नहीं देखते हो, मैं देखता हूँ, तो वो मेरा एक तरफा मामला है आपके प्रति। लेकिन अभी लोग वैसे नहीं करते, अब ऐसा हो गया कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है?
1: दुनिया में 90% शायरों का एक तरफा ही मामला होता है और ये हमेशा चलता रहेगा। एक तरफा प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसको, उस इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जेंडर इश्क का है
0: नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्यूटली
1: इश्क का कोई जेंडर नहीं है, मोहब्बत का कोई जेंडर नहीं है, वो किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग जो बात करते हैं, शायर जितने भी हुए उनका कहीं ना कहीं एक कांटा फंसा होता है जो गले से नहीं उतरता किसी और के। तो ये जो आप कह रहे हैं कि तो मैं मतलब ये इसका जवाब ऐसे ही देना चाहूंगा कि एक तरफा जो होता है यही सबसे मुझे सबसे मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में जो आदमी कर सकता है कि भाई मुझे नहीं जरूरत है, फिर जस्टिफाई मतलब फिर जस्टिफाई कई सारी चीजें हो जाती है, कई सारी चीजें कि भाई तेरे हंसने से भी अगर मुझे तकलीफ थी, तेरे रोने से भी तकलीफ थी, या तेरे ये बात कहने से मुझे तकलीफ थी, चल वो भी हटा दिया, मैं अकेले कमरे में पड़ा हूँ तेरे से इश्क करो।
0: वाह वाह।
1: और वो इश्क पहुंचता है, मतलब हम सुनते आते हैं कि आप किसी को याद कर रहे हो तो सामने वाला भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि वो भी आपको याद कर रहा हो, तो ऐसे ही आदमी कर लेता है, इश्क कर लेता है, और इसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर आज का जो है आज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मतलब जिसमें तक किसी वो चीज थोड़ा मुझे अटपटा लगता है कि पता नहीं।
0: जैसे अभी आपने कहा कि चलो ये हटा दिया, वो हटा दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया, सब
1: फिर भी
0: ऐसे ही। एक शायर थे मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया। जॉन एलिया ने खुद को इतना तबाह कर लिया कि पढ़ते हैं तो पता चलता है उनको, या कुछ शायरों से सुना भी है, कि कई सालों तक खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने। ना किसी मुशायरे में जाते थे, ना किसी से मिलते थे, ना कुछ मिलना जुलना होता था। फिर उनके दोस्त थे सलीम जाफरी, वो आए, कमरा खुला, देखे तो जॉन साहब के बाल बहुत बड़े लंबे लंबे, दांत गंदे हो चुके, बदन से बदबू आ रही है, इतना खुद को तबाह कर लिया। तो शायर इस वक्त क्या सोचता होगा, मतलब खुद को जब बंद कर लेता है सारी दुनिया से, सब मतलब रिश्ते नाते तोड़ दिया, नहीं मुझे दुनिया ही नहीं देखनी, और वो आके खाली कमरा बंद कर दिए है, 8-10 किताबें हैं, 4 दीवार है जिसको 24 घंटा देख रहा है आदमी।
1: जो साहब ने इसका जवाब खुद ही दिया है, एक अपने शेर में दिया इसका जवाब, कि कहते हैं क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, बैठो बुला कर
0: लगाता हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह।
1: तो ये उन्होंने खुद कह दिया है, ये अब इसको मैं इलैबोरेट करूं या कोई भी दुनिया का आदमी इलैबोरेट करेगा, बहुत ही ज्यादा समय जाएगा इसमें, कि एक शख्स है जो अपने आप को इस हद तक तबाह कर चुका है कि सिर्फ और सिर्फ महबूब है उसके।
0: वही उनका शेर है ना, मैंने खुद को इतना तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं।
1: और मलाल इसीलिए इसको आदमी मतलब आज के लोग शायद दूसरी तरीके से, मतलब मेरा ग्लास इश्क है, मेरा मैं इश्क के चश्मे से ही चीजों को देखता हूँ, तो जो मेरे साहब हो या कोई भी हो, तो ये जो इन्होंने कहा है कि क्या कहा मुझसे मैंने आया और बैठो बुला के लाता, तो ये वही बात है कि मैं तो हूँ ही नहीं, खत्म। जैसे हम लोग एक वाक्य एक थोड़ा फोकलोर है, हम लोग सुनते हैं कि लैला से मिलने मजनू गए, तो मजनू ने दरवाजा खटखटाया, तो लैला ने पूछा कौन, तो बोले तैस, तो बोले जा, फिर तो आना है कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर लैला ने पूछा कि कौन, तो बोले तैस, बोले वापस जाओ, फिर तीसरी बार जब आए वो तो पूछे कौन, तो बोले पता नहीं, तब लैला ने दरवाजा खोला और गले मिली, कि ये मैं ये चाह रही थी, तुम कौन, मैं कौन हूँ, यूनियन का नाम इश्क है।
0: किसी एक पर्टिकुलर पर्सन तक सीमित
1: जाना,
0: एक हो जाना,
1: दो लोग एक, जैसे हम लोग अभी देखते विवाह कहते ना, दो रूहों का मिलन है, दो मतलब आत्माओं का मिलन, ये हल्की बात नहीं, ये हमें मतलब हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इश्क ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम कल्चर हो, चाहे हिंदू कल्चर हो, कुछ भी हो, हमें बचपन से हिंट दिए जाते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका वो, तो एक हो जाना, मीरा और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं बचा। एक वक्त और बता दूं आपको कि एक हो जाना क्या क्या होता है, कृष्ण भगवान जा रहे थे जंग पे महाभारत से लड़ने की बात है, तो राधा ने कहा कि कम से कम आप मुझे अपना लीजिए, पता नहीं क्या हो जाए जंग में, मैंने ऐसा सुना है और मेरे टीचर को बताया करते थे, तो कृष्ण ने कहा आप अपनी आंख बंद करिए राधा से, और कृष्ण पलटे और बोले कि अब खोलो, तो राधा ने देखा कि सामने एक और
0: राधा खड़ी है,
1: किससे किससे कहूँ, तू ही तो है, मैं ही तो हूँ, इस लेवल का अगर यूनियन है जो कि मतलब अभी तो
0: इसके बारे में सोचना भी
1: उम्मीद नहीं कर सकते, और जो कि गलत नहीं है, जिसको जितना देखो मैंने बहुत ही अच्छे एक इंसान सुना था कि जिसका जितनी फोकस है, जितनी लाइट है, उसको उतना ही दिखेगा।
0: करेक्ट।
1: उसका फोकस अगर 10 mm का है तो उसको 10 mm का एरिया ही दिखेगा। एक एलईडी का फोकस अगर 1 किलोमीटर तक है तो उसको 1 किलोमीटर का ही रेडियस उसको दिखेगा। इसमें उनकी गलती नहीं, उनको बताया दूसरे तरीके से गया, उनको समझाया दूसरे तरीके से गया।
0: करेक्ट। और ये ऐसा भी है ना कि युग युग की बात है कि ऐसा युग आना ही था जो अब हम देख रहे हैं, ऐसा युग आना है, और शायद इसके बाद और एक युग आएगा जो शायद इससे बुरा हो, है ना। तो ये सब युग आने ही वाले हैं, तो ये युग में ये होना था। तो चलो हम खुश नसीब है कि जो पिछले युग में या उससे पिछले युग में जो हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमारे रूट्स में अभी भी है, और हम जो युग देख रहे हैं और हम आगे का भी सोच सकते हैं कि ऐसा भी युग आ सकता है। अब एक सवाल कि कोई एक ऐसी कविता जो लिखनी शुरू की, पूरी भी हुई, फिर उसे काट दिया, फिर उसे लिखा, फिर काट दिया, ऐसा कितने बार हुआ है?
1: मैं लिख के काटने वाली तो बात जो है बहुत सही है।
0: हाँ।
1: आदमी कभी कभी मैं लखनऊ से हूँ तो थोड़ी अच्छी घर पे उर्दू पे मगर उतनी अच्छी है, तो कम से कम सैकड़ों बार ये होता है कि लाइन लिखेगा जो फील कर रहे थे वो पोर्ट्रे नहीं कर पाए पेज पे, काट दिए। फिर एक दिन बैठे कि यार वो लिख देता हूँ, काट दिए। कई बार हुआ, कम से कम मेरे कम से कम 100-200 शेर तो आधे में एक एक लाइन के पड़े,
0: सिर्फ एक मिसरा लिखा है, उला लिखा, सानी नहीं मिला, सानी लिख दिया, उला नहीं मिला।
1: क्योंकि मैं मतलब यही सोच के, ये नहीं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, मेरे पास वाकई में मतलब लफ्ज नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो क्या जस्टिफाई हो पाएंगे, तो मैं बहुत ही केयरफुल होकर कोई भी चीज लिखता हूँ, ऐसे मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूं लिखने के लिए, तो बहुत बार हुआ।
0: राइटर्स ब्लॉक ऐसा कितना टाइम चलता है, मतलब बहुत महीने हो गए, दिन गुजर गए, साल हो गया, कुछ लिखाएंगे, ऐसा हुआ है?
1: बहुत बार होता है, बहुत ऐसा होता है जब जैसे, और इसमें किसी की गलती नहीं कि इसमें मतलब ये ऐसे ही है कि जैसे पानी बह रहा है, किसी ने नलका रोक दिया, फिर अगर तुम कॉन्शियस हो नलका खोल दिया पानी गिरेगा, तो फिर ऐसा ही है। मतलब मैं इसको ऐसा एकदम पर्टिकुलरली वर्ड में शायद मुझे आपका सवाल बहुत प्यारा है, मगर शायद ऐसे ही है कुछ कि ब्लॉक तो चलता है मेरा, तो ऐसा है कि किसी का भी 15-15, 20-20 दिन कुछ नहीं लिखा।
0: हाँ, दो तीन छह महीने मैंने नहीं लिखा।
1: तो ऐसे ही होता है हम लोग के साथ में होता है, ये इसलिए नहीं होता कि हमारा कुछ कंटेंट खत्म हो गया, हम भूल गए लिखना, ऐसा कुछ नहीं होता, बस नहीं मन करता है। और लिखने तभी मजा आता है कि भाई वो जो दिल से निकली चीज है, तो वो शूटिंग दिल से,
0: जब कुछ आप पे तारी हो रहा हो, जब आप पे कुछ
1: नाजिल
0: हो रहा हो, जब आपने कुछ मांगा नहीं और ऊपर वाले ने आपने देना भर भर भर भर भर भर भर देना शुरू किया, और आप बैठे आपने यार ये आ रही और हो गई पूरी कविता हो गई 1 मिनट के भीतर, फिर करेक्शन, फिर सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक लिखी गई बस उसमें करेक्शन भी नहीं करता, लेकिन फिर वो कविता का ऐसा भी मतलब होता है कि वो सुना भी नहीं पाते, फिर वो इंसान अपने एकांत में उसको पढ़ता है। जब एक कविता ऐसी लिखी जाती है हमसे कई बार कि वो हम सिर्फ एकांत में पढ़ते हैं, उसे दुनिया के लिए नहीं लिखते हैं, मतलब वो एक ब्रह्मास्त्र दिया होता है ऊपर वाले ने, हाँ, कि आप परेशान है तो पढ़ रहे हो, खुश हो तो पढ़ रहे हो, कुछ मिला है तो पढ़ रहे हो, कुछ हुआ है तो पढ़ रहे हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है?
1: ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए, और ऐसा होता है। जैसे एक जैसे जिस्म की एक खुराक है, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे जो आपका इश्क है, जो आपका आपकी जो रूह है, तो उसकी भी एक गिजा है, तो आप उसे वो बस पूरा करने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से जब वो भूख लगते है कि यार आज इश्क बहुत मजा रहा है, तो वो पढ़ या वो लिख दिए, कुछ ऐसा लिख दिए कि पढ़ लिए, तो वो होता है ऐसा। और वो चीज इतनी प्राइवेट होती है कि कुछ शेयर होते हैं,
0: कुछ शेयर वो मतलब आप सुना ही नहीं सकते किसी को,
1: तो वो होते हैं, वो फिर उसमें कई बाउंड्रीज भी टूटती हैं, कई चीजें भी टूटती हैं, शायद जो नियम है कानून है वो भी टूटते हैं, तो इसलिए वो जहाँ है वहीं रहें ज्यादा बेहतर।
0: कभी कभी ऐसा कुछ लिखा और बाद में खुद की पीठ थपथपाई आती है, क्या लिख दिया
1: मैंने, एक शेयर लिखा था और शायद उर्दू में है, लोगों को पता नहीं कैसे लगे, मैं पढ़ दूंगा, आपको मालूम है वाला शेर, मैंने आपको सुनाया था,
0: इरशाद।
1: कई चराग है रोशन, कई चराग
0: है रोशन,
1: बस उनके जस्तजु से है इसरार, तेरी ही जात थी अब तक जो दरख्शां।
0: वाह वाह वाह,
1: तेरी ही जात थी अब तक। मैं इसका थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता दूं लोगों को कि कई चराग है रोशन तेरी जस्तजु से, मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस से कई लोग मुनव्वर हो गए, कई लोग उनकी प्रेजेंस से एकदम नहा लिए इश्क से, हर चीज से, बहुत खुशी से, हर चीज से। मगर असरार मेरा पेन नेम है सर, तेरे में ही वो कमी थी जो तू कुछ नहीं फायदा उठा पाए उनकी उनकी प्रेजेंस से, उनके इश्क से, तो वो उतना लबरेज, उतना अंदर डूब नहीं पाया उस चीज में जितना तुझे डूबना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग सिर्फ उनकी परछाई से, उनकी प्रेजेंस से,
0: यही मैं आपकी बातों से ये समझ रहा हूँ कि समझो एक नदी बह रही है, लेकिन सब हाथ दूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बस ऐसे बैठ के ना नदी को देख रहा हूँ, लेकिन देखते देखते में भी कुछ लोग वो पा लेते हैं जो शायद नदी का पानी पी के ना पाए।
1: हाँ,
0: तो मैं आप जब ये शेर कह रहे थे और जब आप इसका प्रीफेस बता रहे थे, चीजें बता रहे थे, तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, एक नदी बह रही है और पूरा गांव उमड़ा है उसका पानी पीने के लिए, लेकिन मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मतलब क्या पानी पानी ऐसा बह रहा है, लोग पानी पी रहे हैं, अगर पीने से इन लोग इतने खुश है तो मैं इस चीज को देख रहा हूँ, तो मुझे अंदर क्या खुशी महसूस हो रही है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे सब लोग ने समझ लिए, सब लोग ने इश्क बटाया आपके महबूब में, आपके महबूब में सबको इश्क बांटा, उसके पास इतना इश्क है कि उसने सबको बांटा, फिर भी कम नहीं पड़ा, मगर आप सोचते थे कि मैं जाकर डिस्टर्ब तो भी कर
0: रहा हूँ।
1: ये एक अलग लेवल की खुशी होती है, कभी कभी गम भी होता है कि मुझे डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, उस वक्त जो मैं सोच रहा था वो बहुत ही प्योर था, अब शायद थोड़ा मेटेरियलिस्टिक बात है कि नहीं मुझे डिस्टर्ब, मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे जाना चाहिए था, मगर
0: लेकिन यही तो प्रेम है कि एक एक आशिक जो है, एक आशिक जो परेशान है कि यार मैं क्या
1: करूं, आंख से आंख मिल गए उनको,
0: एक बार वो देख ले, उसने पूछा बस, उसने पूछा
1: जैसे मैंने इस पे भी शेर लिखा था, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, निगाह यार का हाल कोई तुझसे पूछे असरार, जब से देखी हमने होश में,
0: हां हां हां वाह वाह वाह,
1: जब से देखा है हमने होश में आए।
0: मैंने भी एक शेर लिखा था, मैं ऐसा ऐसा बैठा हुआ था, तो मुझे मेरे गुरुजी ने देखा, उस टाइम पे देखे और मुस्कुराया, तो मैंने देखा और देख के बोला कि ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ, ये तुम्हारा देखना मेरी तरफ है, खुदा का देखना मेरी तरफ। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गुरुजी मुझे देखने लगे, मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा रब मुझे देख रहा है,
1: इश्क तो प्योरेस्ट फॉर्म में,
0: हाँ, तो ऐसे उतर गया मेरे अंदर में, बोला हाँ, वो मोमेंट था मेरे लिए कि आ हा हा क्या क्या हो गया, मतलब इंसान इसी कोशिश में लगा रहता है ना कि एक बार ऊपर वाला देख ले उसे, है ना,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो वही, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीज है कि आपने लिखा रात में, उसको बहुत मतलब पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा और सुबह उठ के वो पेज को फाड़ के फेंक दिया, तो वो जर्नी जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब रात में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मतलब अरे यार क्या लिख दिया मैं, और मन ही मन सोच रहे कि सुबह इसको सुनाना है लोगों को, और मतलब सिर्फ तारीफे लूटनी है, और सुबह हुई तो वो पन्ने को फाड़ के फेंक दिया।
1: ऐसा होता है जरूर,
0: हाँ,
1: और इसलिए भी होता है क्योंकि मैं मेरे कुछ बताया करते थे कि इश्क में इंसान इवॉल्व करता है, पर सेकेंड उसकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी जो यूनिट हो रही है उसकी बॉडी से, उसकी फीलिंग से, उसके इमोशन से, वो चेंज होते हैं। अगर आशिक का मिजाज चेंज ना हो तो वो आशिक नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: क्योंकि इश्क जो है, हमें लगता है कि इश्क कंट्रोल देता है, नहीं, इश्क फ्रीडम देता है।

0: पर मेरे हिसाब से हिस्ट्री डेफिनेशन नहीं है। तो हम जो लिखते हैं वो उस स्टेज पे लिखते हैं, रात भर में या दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं। तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया, नहीं वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे के लिए बहुत ही प्यारा है आज भी, जो तुम्हारी स्टेज पे जो तुम कल
1: हाँ, ना करेक्ट करेक्ट
0: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा।
1: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
0: तो मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा भी है, इश्क का दरवाजा एक ही, उसको सब वहाँ से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे, आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेयर लिखा निर्वाणा से पहले, फिर एक किलोमीटर बचा वहाँ पे आपने कुछ शेयर लिखा, फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेयर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेयर आपने लिखा था पहले वो खराब
1: है, नहीं करेक्ट।
0: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे वो शेयर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है, आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों
1: को। यही दुनिया को यही तो टटोलना है कि दीवार के उस पार क्या है,
0: वो तो दरवाजे पार हो जाए, इश्क का दरवाजा पार हो जाए।
1: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज़मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब का कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो।
0: बुल्ले शाह का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वाला देखें जात और बिरादरी वाली, तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब अपनी बात पहुंचा पाऊँ तो इस तरीके से कहूंगा कि समझ लीजिए
1: सब्जी बेचने वाले थे मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब,
0: इनायत शाह कादरी साहब जो गुरु जी थे, और बुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है, तो वो थे। तो एक दिन खाना खा रहे तो बुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया था, उसके बाद क्या रखा है। तो बुल्ले शाह की मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है, सपना ही तो है। तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था, जो उनका सेक्रीफाइस था, जो भी था उनका, जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी, सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा, अब वो परेशान हो गए। तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरु जी की गलियों से, निकलते थे सब चीज करते थे, यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहाँ से उनके गुरु जी कभी कदार निकलते, तो वहां पे कोठे में चले गए वो। तो वहां पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा, तो बोले पागल वागल कैसे सब आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी, आप आलिम मौलाना है, आप नाचेंगे। बोले नहीं आज मेरा महबूब यहाँ से निकलेगा तो मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गए और इत्तेफाक से वो निकले नहीं। इतना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे, जो गुस्ल खाना होता है, जो वॉशरूम होता है आज आज आज जहाँ पे आदमी
1: नहाता
0: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा, तो उनके गुरुजी बांस लिए बांबू और बांबू से पाइप को साफ करने लगे, तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से, पूरा सर फट गया उनका। जब देखे खून आने लगा तो गुरुजी और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक थे, तो तब वो गए और दोबारा देखते हैं कि अरे बुल्ला ये तो तू है। तब उन्होंने उनको ऐसे बहुत सारे वाक्य थे, जब उतना वो कुछ वक्फा कुछ साल लोग परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे मनाने के लिए। मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो वाक्य,
1: हाँ वो तो उनकी गुरुजी के चौखट पर सर तोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया
0: आप सोचिए, जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मेरी जो है प्राशिक मेरा पूरा हुआ। तो ज्यादा नहीं मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊँ, बुल्ले शाह के साथ में किसी बहाने मर जाऊँ इसी रास्ते में,
1: इस तरह क्या समर्पण होगा। मतलब ऐसे मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई।
0: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में,
1: हाँ
0: राधा कृष्ण मीरा कृष्ण सब कितने सारे लोग हैं, लक्ष्मण का राम के प्रति
1: प्रेम समर्पण था, जो प्रेम था,
0: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, कुछ कुछ किस लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे।
1: हाँ मतलब चीजें

0: इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला, मेन जो मामला जहां बिगड़ता है कि आजकल के यूथ को ये चीजें, इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जिसे आप चले गए, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल के जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुराने युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक चीज पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया कि मैंने
1: लिखा नहीं, मैंने पैर छुए, मैंने पैर छुए, और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के अराउंड लोग दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो कितनी सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप पे निछावर कर रही है, कर रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितने आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने ही ज्यादा आप, आपका सौभाग्य कि आपको एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाने के लिए हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको छुना। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो पैर छूने के काम, ऐ इंसान तुमने मुझे प्यार किया, तुमने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और,
0: मतलब
1: अपना मेरा ध्यान नहीं, तो ये पैर छूने वाली बात है, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल कर दिया आपने लिखा।
0: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
1: एक गाना समझ में आता है मुझे,
0: तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
1: इसका धुन कैसे गाने का लग रहा
0: है? आपकी नजरों ने समझा
1: प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजर।

0: क्या बात है, क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ,
0: वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के डेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आप गुनगुनाएं तो
1: बीच की है कुछ लाइनें, जैसे

0: क्या मतलब भैया, ऊपर वाले की महिमा भी देखो। एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ, एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ, काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना भी ना। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं,
1: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है उसके अलावा बात करना, मैं समझ गया आप या कुछ नहीं, उसके अलावा की बात करना। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ब्लॉक की बात नहीं करना शकील भाई, कि नहीं नहीं लिखने का मन नहीं करना ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है, मतलब कई कई सारी चीजें। नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान का, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं, महबूब से शिकायतें ज्यादा हो जाती हैं, और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ हटाओ ये, तो ये ज्यादा ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब क्या बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
0: दोनों नहीं कर सकते।
1: अरे तो एक एक जगह में दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना,
0: एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, सही बात,
1: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगे शब्द।
0: नहीं, लेकिन एक मोड़ आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में,
1: बिल्कुल,
0: तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है, फिर उससे प्यार हो गया, नहीं वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाए हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर की नजरिए से।
1: एक शायर की नजर जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा शायर तो नहीं मुझे अपना ये चला मगर मैं सब बच्चे मैंने लिखा, तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
0: का भी भला हो असरार,
1: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
0: वाह वाह,
1: यहाँ इतनी ऊंची ऊंची दीवार है इश्क में खड़ी कर दी कि आप इसे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में, इस मिजाज में, बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर लें मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से, इधर उधर वो एक एक एक एक मंजिला घर है इश्क, हमें रहना उसी में,
0: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
1: कभी गुस्सा
0: तो देखिए मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार है तो उसको ही चूम रहे हैं,
1: बहुत बहुत अच्छी तरीके से।
0: वाह वाह
1: वाह, वही है
0: क्या एक राइटर, मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जैसे एक शायर थे मजाज साहब की जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर, उर्दू के प्रोफेसर, उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं, तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे, लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा, वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको पूरी रात बैठ के शायरी सुना, तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं, अब कोई आदमी क्या करता है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया, थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ, अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको, दिल्ली में एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहाँ पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कब कपा जाओ, एकदम ऐसे कड़क हो जाओ, पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई, शायरी सुनी और रात के लगभग 2-2.5 बजे उनको छोड़ के रस्ते पे चले गए। वो शराब के नशे में इतनी धुत हो गई कि सुबह पता चला कि मजाज नहीं रहे दुनिया में, ऐसा वक्त आया। तो क्या शायर किसी से प्यार करते करते मर जाता है? हाँ, ये शायद हमारे मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या मरने के बाद भी शायद उसी शख्स को दूसरी दुनिया से भी चाहता होगा,
1: जो मतलब जो इस दुनिया में किसी को नहीं पा सकता वो वहां पर नहीं पा सकता। और पाने की जो बात है ये बहुत ही, मैंने आपको बताया ना कि यूनियन यही होना है एक से, हम हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता।
0: ओके,
1: वही हमको मिला दिया है ना, जब वहां पे दो आत्माएं थी मिल लेते क्या दिक्कत थी, मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क। तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचाइए, मैं एक तरफा इसको अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया बर्बाद हो गया मर गया। तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना दे देता है इश्क। जैसे इश्क में कई कई कैटेगरीज हैं, जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रह जाती है। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए, तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है। और इसी दुनिया में आदमी पा लिए, मीरा ने इस दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले, ऐसा नहीं मिला कि को उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे क्या।
0: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
1: अल्टीमेट गोल जो है वो मैं मतलब एट दी एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में, मतलब हमारे मालिक की बाहों में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से लोग पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बीर भाई मोहब्बत से, दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से मैं कहता हूँ प्यार करिए, आप लोगों से अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें। इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, तब एटम बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग, जब दुनिया बनी बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे, फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने, फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल बने तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए,
0: हम बन गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
1: तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है वो यूनियन का ही एक समग्र स्वरूप है। अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है, हमें मिलना ही है, यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपनी करेगी वो यही मिल जाती है, चाहे आखिरी सांस में मिला है मालिक, मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, मिलता ही ज्यादा, वो मालिक बहुत ही बहुत रहने वाला है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुम अगर, मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
0: हाँ, वो तो सही बात है, वो तो सही बात है।
1: यही जवाब है मेरा, और
0: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है, उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते हैं?
1: लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। मेरे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है, मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
0: कुछ नहीं करता तो इश्क करता,
1: तो कुछ नहीं करता तो शायद फिर इश्क करता, और कुछ नहीं करता, मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता, मैं उसमें ज्यादा माहिर हूँ।
0: अच्छा,
1: और सबको मैं सबको मतलब सबको सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने एनवायरमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार,
0: इश्क करें, प्यार करें। इसका मतलब यह है जाके बोला, जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
1: than anything.
0: Yeah, than anything gets bent towards humanity. Just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive, आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
1: मैं यही बताता हूँ कि जब जो हम जो वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर लव, हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया। शबीर भाई आप एक जब एक बच्चा माँ के पेट में रहता है उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है, प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना फिर भी खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरती है ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा कुछ है।
0: वाह, इससे अच्छे क्या ही एंड हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसकी स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जांपल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन, अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी मच लवेबल, दैट योर लव शुड गेट स्प्रेड इन एंटायर वर्ल्ड, इट शुड नॉट गेट बाउंडेड, ये बाउंड नहीं रहना चाहिए या आप इसको क्लोज फॉर्म में ना रखें, इफ यू हैव समथिंग टू गिव प्लीज गिव इट बैक, आप दो, क्योंकि आपने थोड़ा दिया तो वो बहुत ज्यादा फॉर्म में बन के आपके पास ही लौटेगा। लेकिन जब आप एक इंसान तभी अपने जिंदगी में आगे बढ़ता है जब वो अपने अंदर की चीजों को खाली करता है, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते,
1: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें प्यार ऐसी चीज है कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है जनाब,
0: ठहरा हुआ पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नए कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को, मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय,
1: थैंक यू।

0: सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत की जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90 FM रेडियो एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। मैम हैज डन हर फैकल्टी एट शी इज फैकल्टी ऑफ माया सोमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोमैया विद्याविहार यूनिवर्सिटी। शी इज अ एमिनेंट क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल वोकलिस्ट। शी हैज अचीव्ड गोल्ड मेडल इन MA इन वोकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड शी इज डिसिपल ऑफ विदुषी अपूर्वा गोखले जी एंड पंडित किरण फाटक एंड विदुषी धनश्री पंडित राय। शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अवार्ड, लता मंगेशकर अलंकारन अवार्ड विनर एंड अवार्डेड अ गोल्ड मेडल इन मेमोरी ऑफ श्री आर सी जल। परफॉर्म्ड इन इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम गाथा इन 2023, परफॉर्म्ड इन इंडो हंगेरियन प्रोग्राम इन 2024 एंड परफॉर्म्ड इन श्रीलंकन प्रोग्राम इन 2025। She has published 2 papers in international peer-reviewed journals in 2023 and 24. She has been the judge at ZTV Little Champs and awarded a gold medal by Devi Ahila University in memory of Sri Rabindranath Tagore Janma Shatabdi Mahotsav. She is an active classical music-based YouTuber with 100 and plus videos and 4,000 subscribers. Awarded Guru Gaurav Puraskar by Art and Bits Foundation Pune in 2024. And awarded by Sangeet Kala Samman by Akhil Bhartiya Shri Gangadi Samaj Mahila Mandal Khandwa at 9th March 2025. So she was invited to our Acharya Marathi College for end of musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका, आप खांडवा से है, मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ी। एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फुली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में, आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए।
1: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है, जहाँ के किशोर कुमार जी है जगत विख्यात जिनका नाम है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। सो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर। पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई। अच्छा। स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को और ट्रांसफरेबल जॉब में थे, लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ। सो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम, पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे मैंने इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया। एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है। तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ। और बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे वो।
0: अच्छा।
1: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो वो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है, क्या स्वर है, उनका इतना कमांड था। तो कहूंगी कि उनकी आत्मा में संगीत था। बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए और आज यहाँ आ गए।
0: कोई भी मतलब म्यूजिक हो, चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो गुरु कौन से थे आप?
1: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से। भोपाल में काफी सालों तक वो MLB कॉलेज में HOD रहे। और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होकर मुंबई आ गई तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा। लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकल, बाद में मैं कहूंगी कि ये तो एक जीवन ही कम संगीत के लिए, आज भी सर के कॉन्टेक्ट में हूँ और अध्ययन चालू है। उसके बाद 2017 में मैंने अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया जो आज भी चालू है। और चूंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक
0: है,
1: मेरे पिताजी मेरी आवाज सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज ठुमरी के लायक है। सो मुझे लगाव भी था बहुत। मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे, उन्होंने मुझे काफी सारे कैसेट्स लाके दिए थे और सुनती रही मैं, सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हुआ क्योंकि उसमें जो भाव है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गोखले जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ सेमी की वो धनश्री जी से ली है।
0: जी जी। और धनश्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई थी बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट्स विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो बहुत बड़ी विदुषी है। सुनीता जी, अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदिश आप ठुमरी की पेशकश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगी।

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में? आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से मतलब आप किनको ज्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज्यादा सीखती है?
1: मुझे क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी और अजय चक्रवर्ती जी, इनको सुनना बहुत पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट के बहुत अच्छे लगते हैं, सो हम सुनते हैं इनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुड्डू जी का शुरू से ही
0: पसंद,
1: बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं धनश्री जी से मुलाकात हो गई और इनको गुरु रूप में मैंने पाया। सो बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस बात के लिए मैं बहुत धन्य हूँ।
0: जी बिल्कुल। और हम ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दैट गिव्स अ मेन इम्पैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहां पे उनको सुना था।
1: अच्छा,
0: तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: से ही मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का, खंडवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है, तो वहां पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहां उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, म्यूजिक कॉलेज ओपन हुआ है। सो जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ, वहां सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ वहां, फिर हमारे ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था जहाँ पर की बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता था। सो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं जरूर कॉन्सर्ट्स अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पे उसका प्रभाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत
0: सुनना जरूरी है, और वो गुरु शिष्य परंपरा भी
1: जी
0: उसको ज्यादा मायने रखती
1: जी।
0: खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे?
1: कुमार गंधर्व जी देवास से।
0: देवास।
1: अच्छा
0: अच्छा, ओके। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम श्रोते आप सुनते रहिए आचार्य 98.5 ओल्ड रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज अ डिसाइपल ऑफ अपूर्व गोखले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर्स ऑन म्यूजिक थेरेपी। थैंक यू।

0: Welcome after the break. You're listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gangareddy, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा. मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा. लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नया नया सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत में, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. सो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए एकांत चाहिए, कम से कम हाफ एन आवर. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. सो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. सो रियाज बहुत जरूरी है. कहते हैं कि एक दिन भी रियाज छोटा तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं. सो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना जरूरी है, उतना मेरे लिए रियाज जरूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का, इतने घंटों का रियाज होना जरूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरह से देखते हैं इस सब चीजों को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम मिलना बहुत जरूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठकर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम YouTube से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु का चुनाव करना और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठकर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, और मैं तो सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीजें संभाल के करनी पड़ती है. पर बेशक बहुत साधना कहा गया है, सो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठकर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एटलीस्ट हम सुन लें, और तीसरा मनन चिंतन करने से. ये अगर कुछ भी चीजें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि ये राग है तो इसके बोल अलाप कैसे जाएंगे, तानी कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम चलते रहना, वो भी रियाज है.
0: जी बिल्कुल. अब बढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर. आप सुमेया कॉलेज में बहुत सालों से है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था. बाद में मेरा इंटरेस्ट जब मुझे लगा कि इसमें ही है, मेरे फादर को भी लगा, सो मैंने म्यूजिक में ही एमए किया. सो वहां से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, सही दिशा, कि मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे करियर इसी में करना है. सो म्यूजिक में मैंने मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही मैं इंदौर यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से. उसके बाद मुंबई आने के बाद भी मैंने सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अध्यापन वाली जो बात कही आपने वो आज तक जारी है. क्योंकि संगीत के लिए एक जन्म ही कम है. सो मेरी गुरु को मैं हमेशा कहती हूँ कि इस जीवन में तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वो भी अभी तक, मेरी गुरु अपूर्वा गोखले जी अभी तक यशवंत माले जी और शंकर अभ्यंकर जी से सीख रहे हैं. मेरे गुरु श्री किरण फाटक सर जी अभी तक विकास कशेलकर जी से सीख रहे हैं. सो उन्हीं से मुझे गुरुओं से ही प्रेरणा मिलती है कि हम ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हमें आ गया बहुत कुछ, क्योंकि जहाँ ये हमने सोचा वही हमारी प्रोग्रेस रुकती है. सो जितना सीखेंगे, ये तो समंदर की तरह है कि जितना गोता लगाएंगे अंदर उतना आनंद बढ़ने वाला है. तो एक जन्म ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है. और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 में मैं सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा, और वहाँ पर ये सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सुमैया के स्टूडेंट थे, सब पार्ट टाइम था ये सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 2015 से लेकर ये 6 ईयर्स चला और 75+ स्टूडेंट्स थे वहाँ और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा. उसके बाद समीर सुमैया जी जो हमारी ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी में एज ए डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे. सो 2021 से हमारे सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ, जहाँ पर बीपीए एमपीए पीएचडी सर्टिफिकेट कोर्सेज इन सब की डिग्री दी जा रही
0: है. मैम आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली मतलब टेक्निक ज्यादा यूज करते हैं, तो इनके प्रति जैसे हम देखते हैं पूना में है, कहीं कहीं बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूजिक के प्रति ज्यादा उनका लगाव रहता है. लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हैं उनको, 75 स्टूडेंट्स है, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है उसके बारे में थोड़ा बताइए.
1: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है, लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद कि इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, सो जो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया. बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है उनको और मैंने स्वर बता दिए हैं कि सारी सागा मधा नीदा सा. अभी उसके साथ अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा अधिकाना चीर, तो ये जो थोड़ा सा हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन राग हमें आज पता चला कि दिस इज बेस्ड ऑन राग हमीर, तो उनका जो है इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि अरे वाह जरूर हम सीखेंगे. और कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी ना तो वो इमिजिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मीन्स वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं विदाउट एनी नॉलेज. तो ये बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे. तो मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है.
0: बिल्कुल. अभी आप हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप बुक्स भी पढ़ते होंगे क्योंकि बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि बुक्स तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है शास्त्रीय संगीत का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप बुक्स के बारे में या पढ़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: नहीं, डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो पक्ष हैं, एक शास्त्र पक्ष है और एक कला पक्ष है, भाव पक्ष है. जितना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस के तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के हैं,
0: अच्छा
1: 2 प्रैक्टिकल के हैं. सो उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है. तो बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं, लेकिन हमारा एज ए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी. बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना तो वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर क्या था, शारंगदेव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब विक्रमी पुस्तक मालिका की बंदिशें हैं. और सारी चीजें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सके.
0: और ऑटोबायोग्राफीज भी, कितने लोगों की ऑटोबायोग्राफीज है.
1: हाँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता, हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े. लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया, तो तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं. आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है, वही हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं या अरे जसराज जी हैं या भीमसेन जोशी हैं जिनको उन्होंने देखा है या उनके बारे में सुना है. लेकिन जो बहुत पुराने हैं उसमें उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन उनको हम यही बताते हैं कि आपको इनसे प्रेरणा लेना है
0: जी।
1: सिर्फ ये नहीं है कि लिखना है और बस एग्जाम देना है, कि कहीं ना कहीं आपके जेहन में रह जाएगा कि उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया, और उस जमाने में जब ज्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रस रियाज करके और वो सब अचीव किया है
0: जी। और आजकल भी ये जमाने में, मतलब 21st सेंचुरी में भी, अभी राहुल देशपांडे जी है, महेश कारे जी है, उनकी वजह से ये जो यूथ है वो फिर से शास्त्रीय संगीत की तरह बढ़ चुके हैं, ऐसा आपको लग रहा है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना ही चाहिए। तो आज वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं। सो यूथ बहुत पसंद कर रहा है, क्योंकि यूथ आज के जो युवा हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो केवल क्लासिकल की तरफ नहीं है। हम सिर्फ क्लासिकल से बांध के नहीं रख सकते, बहुत मतलब बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सोमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं, प्लेबैक सिंगिंग। तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो तो होना ही चाहिए। आप कुछ भी गाएं वो तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है, प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है, तो आप बखूबी किसी भी तरह का संगीत गा सकते।
0: लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है। ये जो है इसके लिए वो, ये जो यूथ है वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर फिल्मी संगीत की तरह, जैसे आपने
1: बराबर। सो मेरा यही इंटेंशन है तेजस्विनी जी, कि शास्त्रीय संगीत से जो लोग डरते हैं या जो ऐसा समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना
0: जी।
1: मैंने इसीलिए 2017 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफी, मतलब हमारी क्लासेस ऑनलाइन
0: होते थे,
1: हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सिखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो बंदिशें मैं सिखाती थी, स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते हैं, क्योंकि आजकल तो गूगल का जमाना है, कोई भी चीज हमने सिखाई वो गूगल करते हैं। सो मैडम नहीं, वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, सो प्लीज आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, तो कहने लगे नहीं आप जो बंदिशें सिखाते हैं वो नहीं मिल रही है। सो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया पेंडेमिक में, और बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला। कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पा रहा अच्छे, तो इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ राग बेस्ड वीडियोस बनाए हैं, और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनके भी बात की है। सो
0: जरूर इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं सुनीता, डॉक्टर सुनीता गंगरडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो। थैंक यू।

0: वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. यू आर लिसनिंग टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगारेड्डी मैडम से बातचीत करें. मैम अभी बढ़ते हैं आपके PhD की ओर. PhD में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए. और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बताते हैं.
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं जरूर शेयर करूंगी. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको SIES कॉलेज एंड षणमुखानंद ने कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था. और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर, सो हमारे यहाँ सुमैया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी. सो हमारे यहाँ तब उस समय में सुंदराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है. सो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूजिक थेरेपी के वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला. और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया, तभी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मजा है? हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए. तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को ना प्रैक्टिकली, और जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया. और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे. तो लेकिन इतना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, और वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया कि ये बहुत अच्छा है. और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बिकॉज हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है. और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे ये म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं.
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जो पेशेंट्स है हॉस्पिटल्स में ज्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके, और उसमें वो ज्यादा रिकवर भी ज्यादा फास्ट होते हैं. तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा, इट वर्क्स लाइक वो भी सुन. अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वो भी है. तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशन है उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे?
1: जरूर जरूर. म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ऑलरेडी कितना काम हुआ है इसके ऊपर. तो मुझे शशांक कट्टी जी, जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा. और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोस के थ्रू ही मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं, और उन रागों का क्या प्रभाव है. सो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज किए, और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज्यादा काम करेगा. सो उसके एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उसको मराठी गाने, भावगीत, नाट्य गीत, और कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ. और जब मैं उनको गाकर बताती हूँ, और एक वर्कशॉप की तरह से हम इस प्रोग्राम को लेते हैं, तो ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है. सो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए, और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं, और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम.
0: जी या तो थोड़ा वापस से गाना सुनना चाहेंगे
1: सर?
0: तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक.
1: या जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए रागे मन की बात करती हूँ, तो आजकल स्ट्रेस सभी को है. सो सबसे पहले थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ, क्योंकि ऑडियंस में से कई लोग जानकार भी होते हैं, और कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है. सो छोटे छोटे फ्रेजेस लेकर मैं ऑडियंस को उसमें गाने के लिए बोलती हूँ. जैसे यमन राग की अगर हम बात करें,

0: मैम और एक क्वेश्चन अभी अभी हम रेंज पे है इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत के, मैं ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है. तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शो से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं जो मेरा विषय भी है पीएचडी. तो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनके तरह गाऊं, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही खत्म भी हो जाता है. अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है. मैं कहूंगी कम से कम 5-10 साल तो आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है किसी गुरु, और उसके बाद भी रियाज करना होता है, क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते खाना खाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीजें खुद से नहीं निकलेगी, क्योंकि राग है ना, जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता है तब तक हम उसका इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे. सो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें, है ना. तो बहुत अच्छी कई प्रतिभाएं होती है जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं या रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है. तो मेरा यही गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए.
0: और अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट्स ज्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट्स में ज्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसी तैयारी करना चाहिए अगर एक परफॉर्मर है, अगर लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने जिक्र किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है, तो आप लाइव कॉन्सर्ट्स को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसे तैयारी करनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और आप एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस कहाँ कैसे ऑडियंस है, तो एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना चाहिए. कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है, एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था कि मैं एक चीज गाती हूँ और दर्शकों की नजरों से समझ जाती हूँ कि दर्शक क्या चाहते हैं, है ना. तो प्योर क्लासिकल आर्टिस्ट हैं लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा झप ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या दादरा पे आ जाती हैं, या जैसे वो गाती हैं हमें तुमसे प्यार कितना. तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा कि राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस कैसे
0: कैसी
1: है, प्रॉपर क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो 2 घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खड़ा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, उनका टेस्ट क्या है. तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या. वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है. और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कि आज हम सिर्फ उसी भावना को लेके नहीं चल सकते, बिकॉज हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहता है, है ना. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है.
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आचार्य 90 FM. और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग.
1: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा एंड में. जो मुझे बहुत पसंद है,

शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी

मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क, धड़क।

0: हेलो, मेरा नाम सुपर्णा कश्यप है और मेरे साथ आज है मिस मुक्ता जोशी। हम दोनों भी काउंसलर्स हैं। आज हम लोग एंटी बुलिंग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से रफली 20% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एक्सपीरियंस बुलिंग। एंड बुलिंग अलग अलग तरीके का हो सकता है, वर्बल बुलिंग हो सकता है, फिजिकल बुलिंग हो सकता है, और आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो साइबर बुलिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो होती है आजकल। तो मेरा पहला क्वेश्चन मुक्ता मैम आपसे ये है कि बुलिंग इंडियन कॉलेज में किस प्रकार में दिखाई देता है?
1: थैंक यू इंट्रोड्यूस करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बुलिंग शब्द सुन के हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है। वैसे तो वो बड़ी है बट वो कभी कभी दिखने में उतनी बड़ी नहीं होती। जैसे हमने देखा है थ्री इडियट्स मूवी देखा है या मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा है, उसमें कैसे हमें रैगिंग दिखाई जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वैसा होता है तो उसको ही हम बुलिंग बोल सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं है। बुलिंग एकदम छोटी छोटी चीजों में भी देखी जा सकती है, जैसे किसी का मजाक उड़ाना, राइट, इसको भी हम बुलिंग के अंतर्गत ही लाते हैं। तो कोई किसी का बोलने का तरीका होता है, किसी कोई कहाँ से आया हुआ है जिनका नेटिव विलेज कहीं और है, उसका मजाक उड़ाना, कास्ट का मजाक उड़ाना, वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके का खाना खाते हैं, उसका मजाक उड़ाना, ये बेसिक चीजें हैं जो बुलिंग के अंतर्गत आती है। हमें ऐसा लगता है ये तो क्या है, ये तो एकदम छोटी चीज है, एक दूसरे को चिढ़ाना तो नॉर्मल है, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये चीज जब बार बार होती है हमें लगता है हम अकेले हैं जो ये कर रहे हैं, बट एक इंसान के लाइफ में बहुत लोग होते हैं जो सेम चीज उसके लिए करते हो, तो उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो हम उसमें से सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं लेकिन वो हिस्सा भी बहुत बड़ा बन सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ दूसरे के बारे में गॉसिप करना, किसी को ग्रुप से अलग करना, उनको आइसोलेशन में रखना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में उनको पार्ट नहीं लेना, जानबूझ के उनको नहीं मुझे ये इंसान नहीं चाहिए मेरे ग्रुप में ऐसे बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की एक्टिंग करना, ये जो सारी चीजें हैं एकदम सिंपल एग्जांपल्स है बुलिंग के जो हो सकते हैं। इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हो, जो हमें लगता है हम चिढ़ा रहे हैं, बट वो भी बुलिंग के अंतर्गत आता है, वो भी साइबर बुलिंग के अंडर आता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमें दिखते हैं यूजुअली कॉलेजेस में। हमें लगता है सब हंसी मजाक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बुलिंग कभी भी ना मजाक नहीं होता। मतलब वो हमारे लिए शायद मजाक होता है जो दूसरे का मजाक उड़ा रहे, लेकिन जिसका मजाक उड़ रहा है उसके लिए वो कभी भी मजाक नहीं होता। हम सोचते हैं कि अच्छा शायद हो सकता है ऐसे। और दूसरी चीज ऐसे है कि बुलिंग तब होता है जब कोई अपनी पावर दिखाना चाहता है किसी और को, सामने वाले को, अपनी अथॉरिटी जताना चाहता है, मैं कैसे सबसे बेहतर हूं, मैं कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, इन चीजों को दिखाने के लिए ज्यादातर बुलिंग देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि ये बुलिंग सिर्फ फ्रेंड्स में हो या पियर्स में हो, ये बुलिंग कभी कभी ऐसा भी होता है हायर अथॉरिटी के लोग भी लोअर अथॉरिटी के लोगों पे बुलिंग कर सकते हैं। तो बुलिंग अलग अलग तरीके का होता है जैसा मैंने अभी बताया। हमारे इंटेंशंस क्या है उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे एक्शंस क्या है, उस पर हमें ध्यान देना होता है। तो वही मुझे लगता है कि ये सारे चीजें ध्यान में रखते हुए ये हमें दिखता है अक्सर कॉलेज में होते हुए।
0: जैसे कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताया कि रैगिंग जो एक बहुत हाई लेवल में होता है वर्सेस जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो रोज होती है जिनको हम बहुत इजीली अनदेखा भी कर देते हैं, तो ये सारी चीजें भी बुलिंग के अंडर आती है। और जब कोई एक्सपीरियंस करता है बुलिंग तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है?
1: कई बार मैंने ना लोगों को बोलते हुए सुना है, बच्चों को बोलते हुए सुना है कि ये ना ज्यादा ही दिल पे ले लेती है, या फिर ये ना ओवर थिंक करता है, ये क्या छोटी सी बात है, इसके बारे में क्या इतना सोचना है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बुलिंग अभी

0: हम बात कर ही रहे हैं तो हम काउंसलर्स हैं, अब हम बुलिंग के बारे में बात क्यों ही कर रहे हैं, तो ये सवाल मुझे काफी अप्रोप्रिएट लगता है कि उसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। और हाँ, जरूर होता है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बुलिंग मतलब क्या है, एक छोटा सा चिढ़ाना हो गया, वो एक बैड मेमोरी है शायद किसी के लिए। बट ये कभी भी ना सिर्फ बैड मेमोरी नहीं रहती है, वो दिल पे लगता है। और जैसे मैंने बोला कि जब वो बार बार होते रहता है तो उसका बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे, किसी के भी मेंटल हेल्थ पे हो सकता है। एंग्जाइटी होना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, इतना सोचना, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज करना, अपनी आइडेंटिटी को जिस तरीके से लोग हमें पुकारते हैं उस तरीके से बनाना। अगर कोई किसी को यार तू तो बहुत पतला है बोलते रहेगा, तो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है कि यार मैं बहुत पतला हूँ, मैं मतलब मेरे में कुछ नहीं है, वही मैं हूँ, राइट। तो वो आइडेंटिटी बन जाना। ये भी देखा गया है कि एकेडमिक्स में, पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस उसकी वजह से लूज होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑल्दो वो एक छोटी सी चीज लोगों को लगती है, वो इस इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। बहुत बच्चों ने हमें ऐसा अभी तक बताया है कि वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग उनके बात करने के तरीके पे हंसेंगे। आप इमेजिन करो कि कोई इंसान जिसको सब पता है, इंटेलिजेंट है, बट वो क्लास में बात क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उससे भी बहुत बड़ी बात ये होती है कि लोगों को, चलो अभी उनको पता है कि उनको बुरा लग रहा है, उनके साथ बुलिंग हो रहा है, बट उसके बारे में बात करने में भी उनको शर्म आती है क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं है मेरे बारे में। तो वो ना किसी से बात कर पाते हैं, ना खुल पाते हैं उसके बारे में, कुछ शेयर कर पाते हैं, तो अंदर ही अंदर रह के घुटन जैसे होने का भी चांसेस होता है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि अगर आपको बुलिंग से आपके ऊपर कोई परिणाम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। बुलिंग इज अ रॉन्ग थिंग, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। आप इंसान हो और हर इंसान को बुलिंग की वजह से तकलीफ होने के चांसेस है।
1: तो एक जो चीज आपने बताई कि जब एक कमेंट बार बार किसी को बोला जाता है, उनकी पूरी पहचान ही उस एक चीज में रह जाती है, बाकी अचीवमेंट्स भी कुछ रहेगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और ये फिर बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है इन चीजों से कोप करना, कि कैसे खुद को संभाले, कैसे खुद को सपोर्ट दे, कैसे हम इस चीज से उभर के आए। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम खुद को सपोर्ट करें इस सिचुएशन में?
0: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि हमें ऑफकोर्स किसी भी इंसान को, हमारे कम्युनिटी का, हमारे आसपास के लोगों का सपोर्ट जरूरी होता है। तो जब मैं ये सवाल का जवाब दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही उस पर काम करना है, लेकिन अगर हमारे साथ बुलिंग हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे ख्याल रखने के लिए, वो मैं यहाँ पे जरूर बता सकती हूँ। तो पहली चीज तो ये है कि ये आपकी गलती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान को बुली किया जाता है उनको लगता है मैंने ही कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये समझिए कि कोई भी बुलिंग डिजर्व नहीं करता, ना आप ना कोई और, राइट। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप सैड, एंग्री, कंफ्यूज फील कर रहे हो तो वो भी बहुत नॉर्मल है। अपने इमोशंस को रोकिए मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो मजाक है, तुम्हें इतना क्या हो रहा है, इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है, और हमें लगता है कि हाँ हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, और हम अपने गुस्से को अंदर दबा देते हैं, और वो इमोशन दबाने की वजह से और ज्यादा अंत में उभर के आते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके बारे में किसी से बात करो, जो भी, जिस इंसान को भी आप भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, उनसे बात करो। आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपका कोई कजिन हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं. जरूरी नहीं है हमेशा आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास ही आना है. आप किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में बात जरूर करो. आपका जो इमोशनल एक आपको लोड फील होता है ना, उसकी वजह से वो थोड़ा कम होने में उससे मदद हो सकती है. तीसरी जो चीज है, अगर आप आपके साथ होने वाले बुलिंग को डॉक्यूमेंट करते हो, उसको लिख के रखते हो कि ये कब हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था, किसने किया था, सिचुएशन क्या था, तो अगर आप कभी आगे जाके कंप्लेंट करना चाहते हो, इसमें ये चीज बहुत काम आ सकती है कि आप उसको कंप्लेंट भी आगे रेज कर सकते हो. हर कॉलेज में कंप्लेंट रेज करने का तरीका होता है, कहीं भी देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, तो आप उस पर कंप्लेंट रेज कर सकते हो. फाइनली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि अपने आप को डिफेंड करने का एक तरीका ढूंढना. मुझे पता है कि ये बहुत आसान नहीं है, और जब कोई ऐसी चीज हो रही होती है, स्पेशली आपके साथ बुलिंग हो रहा होता है, तो उस समय हम अपने आप को डिफेंड करना, उतनी ताकत लाना उतना मुश्किल है. लेकिन अगर आप में वो ताकत आती है, आप ला पाते हो, तो जरूर अपनी बाउंड्री सेट कीजिए. सामने वाले को सीधे बताइए कि मैं इस चीज से कंफर्टेबल नहीं हूं. मुझे पता है कि उसके परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वो परिणाम अगर आपको लगता है कि आप भुगतने के लिए ठीक है आपके लिए, तो आप ये जरूर कीजिए. सामने वाले को ये बताइए कि ये ठीक नहीं है, मैं ये सह नहीं सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत दुखद है, ये मुझे बहुत डर लग रहा है. ये बताने से एटलीस्ट ये जायज होता है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप इस चीज को रोक पाओ. और आगे जाके अगर कोई बोलता है कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने ऐसा किया, तो तब आपके पास एटलीस्ट ये है कि आपने बोला है लेकिन फिर भी वो रुके नहीं. फाइनली अगर आपके कॉलेज स्कूल कैंपस में कोई सपोर्ट सिस्टम हो, जैसे कुछ कॉलेजेस में एंटी बुलिंग कमिटीज होते हैं, एंटी रैगिंग कमिटीज होते हैं, तो ऐसे कमिटीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. अपने लोग ढूंढो जो अपनी बातें सुनते हैं, है ना. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. एंड फाइनली अपने मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आप कुछ भी नहीं कर पाए, हो सकता है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है, तो एक कुछ भी नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट हमारा ख्याल रखने के लिए एटलीस्ट हम एक जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए. कोई लोग वॉक के लिए जाते हैं, उनका मन शांत होता है. कोई लोग जर्नल करते हैं, अपने डायरी में लिखते हैं अपने ख्याल, अपने इमोशंस अलग निकालते हैं बाहर. मेडिटेशन करना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं उनके पास भी जाने का एक ऑप्शन हो सकता. और ये ध्यान में रखिए कि स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो. हर कोई जिंदगी में स्ट्रगल करता है, लेकिन आप जब हेल्प मांगते हो या किसी से हेल्प लेते हो, वो आपको स्ट्रांग बनाता है. तो बिल्कुल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं है.
1: थैंक यू मैम, ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आगे रखी कि हेल्प मांगने से आपको कोई कमजोर नहीं बनाता है. तो ये एक बहुत जरूरी मैसेज है जो हम आज पहुंचाना भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए. और एक और चीज, जैसे आपने बताया कि सपोर्ट का जिम्मेदारी उस इंसान पे नहीं होना चाहिए जो बुली हो रहा है. ये एक कम्युनिटी जैसी एनवायरनमेंट हमें तैयार करनी है कि जहां हम सब एक दूसरे का सपोर्ट कर सके. तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कि हम किसी का सपोर्ट करें जो बुली हो रहा है, हम उसको कैसे सपोर्ट करें.
0: कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं तो एक इंसान हूं, मैं क्या ही कर सकती हूँ. और यही जो सोच है वो हमें कुछ करने से रोकती है. तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बहुत बड़ा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप छोटा सा भी स्टेप लेते हो तो वो भी एक सपोर्ट के तरीके से एक इंसान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है. तो जब बुलिंग हो रहा है तब जाके झगड़ा करना, इतने बड़े स्टेप्स लेने की भी जरूरत नहीं है. मैं तो कहती हूँ कि बस अगर कोई बुली हो रहा है तो बाद में जाके उनसे बात करना, उनको बताना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ. इतनी चीजें सिर्फ उनको बताना और उनको ये महसूस कराना कि उनके साथ भी कोई है जो उनको सपोर्ट करता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है. प्राइवेटली उनके साथ जाके एक बार चेक इन करना कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या, मैं कुछ कर सकती हूँ, ये चीजें पूछना, इनसे भी बहुत फर्क पड़ सकता है. अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं और उनका उसमें कोई ओपिनियन है, वो आपको कहानी बता रहे हैं कि आप उनके साथ क्या हुआ, तो उसको बिना जज किए सुनिए. उससे क्या होता है कि हम ना थोड़ा क्या, हमें ऐसा लगता है कि हमें सही या गलत में जाना चाहिए, सच या झूठ में जाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं होती है. वो इंसान को आप सिर्फ सुनोगे एकदम शांत मन से बिना किसी जजमेंट के, तो वो भी उनके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है. अगर आप इतना कर सकते हैं कि अगर कोई बुली कर रहा है और उस बुली को आप साइलेंट कर सकते हैं, वही के वही बोल सकते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हो, या फिर यार दूसरों का मजाक उड़ाना सही बात नहीं है, ऐसे अगर आप उन बुली को भी बता सकते हो तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बोला कि आप जाके एकदम झगड़ा शुरू कर दो. सिर्फ वो सिचुएशन जब हो रही होती है उसको बीच में तोड़ना, उसको इंटरप्ट करना, उतना ही अगर आप कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुली हो रहा है तो उनको बोलना कि अरे छोड़ना, चल मेरे साथ चल, ऐसे बोल के उनको वहां से लेके जाना ताकि वो और आगे बुली ना हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है. ये समझना भी जरूरी है कि जो बुली कर रहे हैं वो भी कभी कभी अपने ही खुद के मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे होते हैं. उनको भी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं. तो कई बार कन्फ्रंटेशन के जगह वो सिचुएशन को काम करना ज्यादा असर करता है. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम कोई भी अपने आसपास अगर बुलिंग हो रहा है तो उसको सपोर्ट कर सकता है.
1: एक बस जो एक वो फीलिंग होती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, ये एक चीज ही बहुत ज्यादा ताकत दे सकती है हमें किसी भी चीज से गुजरने के लिए.
0: बिल्कुल.
1: और इसी के चलते हम कॉलेज में एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सपोर्टिव कल्चर बिल्ड करें जहाँ पे बुलिंग को हम नो ऐसा हम कर सके कि नहीं ये करना ही नहीं, और हम एक कॉलेज के लिए एक सपोर्टिव कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं.
0: इमेजिन करो यार कि एक कॉलेज जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी कम्युनिटी बनी है जहाँ बुलिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है. तो जब मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ तो मुझे, और मैं बोलती हूँ कि ये एकदम आइडियल है, शायद वहां तक पहुंचने में बहुत साल लगेंगे, कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना हम अभी से शुरू कर सकते हैं. तो वो कैसे कर सकते हैं? बेसिक, एकदम छोटी छोटी चीजों से. जैसे क्लास में आप किसी को मिलते हो तो उनको हेलो बोलना, आप कॉरिडोर में चल रहे हो तो कोई भी सामने दिखता है, आंखों में आंखें मिलती है तो एक दूसरे को हेलो बोलना, ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, टीचर्स को ग्रीट करना, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को ग्रीट करना, राइट. कोई नया स्टूडेंट आया है कॉलेज में और पहले उनके कोई दोस्त नहीं है तो उनके साथ जाके बैठना, उनको इंक्लूडेड फील कराना, रादर देन कोई और आके उनको बुली करना शुरू करे, उसके पहले ही हम जाके उनको इंक्लूडेड फील करा सकते हैं. तीसरा है कि कोई अगर अपने आप को सबके सामने लाके कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, किसी चीज में भाग ले रहा है, तो उनको अप्रिशिएट करना. वो भी एक बहुत, हमें लगता है कि वो ये कौन करता है ऐसे, पर वो करना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है उस इंसान के लिए. किसी को कोई पढ़ाई का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उनको वो समझाना, ऐसे छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं उससे भी बहुत बड़े परिणाम होते हैं. तो मैं ये बोलती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे एक की वजह से क्या होगा. हमारे एक की वजह से और लोग इंस्पायर होके सिमिलर बिहेवियर ला सकते हैं. तो ये मुझे लगता है कि हम अपने कॉलेज के लिए छोटी छोटी चीजों के थ्रू ला सकते हैं.
1: और जैसे आपने बोला ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज के इसमें सोचते हैं क्या ही हो जाएगा करने से, क्या फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें ही है जो आगे जाके फर्क लाएंगे. सो एनी फाइनल थॉट्स मैम टू कंक्लूड दिस?
0: मुझे लगता है कि कोई

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: फाइव मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।

0: तुम्हें मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेते। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोन सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: तुम क्यों परेशान होती हो भाई, लाओ मैं बनाता हूँ मिठाई।

कृष्णकांत जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं। हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी।

0: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोज बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुर्दा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नसम क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ। मीना
0: भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
1: मैं तुम्हारी जिंदगी से गया ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
1: मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं प्यार ही नहीं भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
1: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दोगी ना? तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, चाहती थी। तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीना चाहती। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रखती है।